एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 14, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 4 तारीख प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी चाईबासा है, 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने

से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में श्री रामचरित मानस काम। ये आकाशवाणी चाईवासा है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इसमें आज के कलाकार हैं हरिओम शरण।

कार्यक्रम समर्पण में आज के कलाकार थे हरिओम शरण। यह आकाशवाणी चाईबासा है, प्रस्तुत है कार्यक्रम अभिवरण। पौने 7 बजे सुनिएगा आनंद मोहन पाठक से सुगम संगीत। 7 बजे जोहार चाईबासा कार्यक्रम होगा। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार होते हैं और उसके बाद लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की महक। इस दैनिक कार्यक्रम में आज सुनिए खोठा लोकगीत। विविधा ये कार्यक्रम होगा पूर्वान्न है 9 बजे। 9:30 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंजन में, 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 10:30 बजे से 5:00 बजे तक विविध आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

किसान वाणी कार्यक्रम होगा 5:30 बजे, 6 बजे मुख्य समाचार, 6:02 पर बंगला कार्यक्रम सात रंग, 6:30 बजे संथाली कार्यक्रम होगा, 7 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले में आजकल। 7:10 से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसका प्रसारण किया जाएगा।

कोई सच डरा।

सुगम संगीत में आज के कलाकार थे आनंद मोहन पाठक, जोहार चाईवासा। पेश खिदमत है आज का ये कार्यक्रम फिल्म कबीर सिंह के इस नगमे से।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धारा नाम बोले रुआ में अले परिवार से मतलब पूरे ये
3: वर्मा मंगलोर को गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
5: मुकुल बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना व्यापार में रिया तपा में रिया वहा बेटा मिका
6: अन्या मुतुम दो बुंबई कोड़ा पटन मुतुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन मुतुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार फी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते सेसेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सब

0: सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

कार्यक्रम जोहार चाईबासा में वही सुनते हैं चंद वतन परस्ती की जो भावना है उस जज्बे से लबरेज चंद गीत।

फिल्म दलाल के इस गाने के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम जोहार चाय बादशाह। हम आकाशवाणी

के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद

0: की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर पुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
6: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के

0: Geelong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने झारक्राफ्ट के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यटन स्थलों पर बिक्री को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव की स्मारिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। श्री सेठ ने झारखंड के उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
4: देखो, देश के अंदर हर चीज इंडिजिनस की ओर बढ़ी है। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो से है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उसी स्वदेशी के भाव को लेकर हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा विभाग भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 25-26 का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 38,424 करोड़ रुपीज गया।
3: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में धनबाद और बोकारो से संबंधित 20 शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने बीसीसीएल भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिकायतों का त्वरित समाधान आयोग की प्राथमिकता है।
5: बोकारो और धनबाद मिलाकर के 20 मामले थे, अलग अलग मामले थे, कुछ सर्विस मैटर भी थे, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं और विकास से संबंधित मामले थे। कई लोग उनका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था और माइनिंग भी हो गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिली। आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने दोबारा तिबारा हियरिंग करने के बाद में आज वो केस सक्सेस हो गए, उनका जमीन क्लियरेंस हो गया।
3: रांची के गोपाल प्रसाद बर्मन पहले एक छोटी चाय की गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सीमित पूंजी के कारण व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। गोपाल का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिले क्रमिक ऋण का उपयोग कर उन्होंने पहले चाय नाश्ते का कारोबार बढ़ाया और बाद में अटल स्मृति वेंडर मार्केट में कपड़ों की दुकान शुरू की।
6: पहला तो कि ये लोन रेडी पटरी वालों के लिए था, वो मैं छोटा सा चाय का दुकान चलाता था तो सोचा अगर कुछ पैसा मिल जाता तो इससे हमारा व्यवसाय में प्रगति होता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है हम जैसे लोगों के लिए मील का पत्थर है और इनकी सहायता लेते हुए अपने व्यवसाय को आगे से आगे ले जाने का कोशिश करें तो वो सफलता जरूर हासिल।
3: रांची नगर निगम ने हरमू नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए मापी अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड 23 के हिंदपीढ़ी स्थित हरमू नदी तट का भौतिक सत्यापन कर अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली संरचनाओं को चिन्हित किया गया। निगम ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य आगे भी जारी रहेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। समिति के अधिकांश सदस्यों ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया, जबकि कुछ मंत्री इसके पक्ष में रहे। अब समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी। इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ में संस्कृत भारती की ओर से 7 दिवसीय संस्कृत भाषा संवर्धन आवासीय शिविर की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ. सरोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में पूरे राज्य से लगभग 150 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। घटना में मृतक की बेटी, माता और पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विधायक डॉ. नीरा यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस पर पूर्व शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
7: इसमें पूरी साजिश उस थाना प्रभारी की है, जिनको बार बार आगाह किया जाने के बाद भी वो फोर्स नहीं भेजे, ना खुद गए और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलाए। अगर उनकी मां को जब मिट्टी के अंदर दफनाया जा रहा था, उस समय कार्रवाई करके वो पकड़ के लाए रहते, जो जान रहे कि कौन उसको कर रहा है, तो इतनी बड़ी आज घटना नहीं घटती।
3: हजारीबाग के कटकमदाग में 2 नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।
8: इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है।
3: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में फायरिंग, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मेड़ा के अनुसार विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
9: कार्रवाई हुई है, इसमें एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा पिलेट और एक स्कूटी और 4 एंड्रॉइड मोबाइल भी इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनके पास से प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से इसमें मतलब काफी 3 दिन के अंदर अंदर में ये इस प्रकार की कार्रवाई की गई है और बहुत एक कुछ गैंग से इनका संबंध भी सामने आने की संभावना है।
3: मौसम केंद्र ने 3 से 8 जून के बीच राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और गर्जन की संभावना जताई गई है। फुटबॉल। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हरा कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम 6 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मैच का एकमात्र गोल 58वें मिनट में सनफिदा नोंगराम ने किया। पहली बार की चैंपियन भारतीय टीम का फाइनल में 6 जून को बांग्लादेश की टीम

मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने लिखा है, 6 कमरों की अनुमति, चल रहा था 6 मंजिला होटल, आग से 11 विदेशी सहित 21 जिंदा जले। दैनिक जागरण ने लिखा, अवैध होटल में आग, 21 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रातू में छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ ने मार डाला। दैनिक भास्कर की लीड है, ममता को झटका, 58 विधायकों का असली तृणमूल होने का दावा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मघी और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आई सुनी लोकगीतों का हमारे कार्यक्रम लोक रंग। आज आप सुनेंगे खोटा लोकगीत करुणा देवी और साथियों से।

ध्वनि तरंगों की ताल पर यह है आकाशवाणी चाईबासा एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं शिवानंद पांडे और साथी।

माटी की महक लोक संगीत के इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे खोरठा लोकगीत। कलाकार थे शिवानंद पांडे और साथी।

पूर्वाह्न के ठीक 9 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आज का हमारा विविधा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कीजिए स्वीकार SBC का प्यार भरा नमस्कार।

0: सामीन, आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई शिक्षा पर एक भेंट वार्ता। फिल्म संगीत भी होगा, लेकिन सबसे पहले एक कविता जिसका शीर्षक है 4 जून का महत्व। 4 जून की धूप में लिखी इतिहास ने एक खामोश स्याही, जहां समय ने अपने पन्नों पर कुछ जीतें कुछ हारें सजाई। यह दिन केवल तारीख नहीं, यह स्मृतियों का एक दरिया है। कहीं संघर्षों की आहटें हैं, कहीं उम्मीदों का जरिया है। धरती ने इस दिन कई रंग देखे, कभी आंधियां, कभी उजाले, कभी किसी ने हौसले गढ़े, कभी टूटे सपनों के प्याले। हर 4 जून हमें यह कहता है कि समय कभी ठहरता नहीं, जो आज इतिहास बन जाता है वो कल फिर से बदलता यहीं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मौन भी कभी बोलता है, संघर्षों की राख के भीतर ही नया सूरज फिर से खिलता है। तो चलो इस दिन को समझें हम, सिर्फ तारीख न रहने दें, जो बीता है उससे सीख लेकर अपने कल को गढ़ने दें। और एक छोटी सी गज़ल, तकमील से तकमील पे अशार। तकमील पे अशार लिखे जाते हैं जब ख्वाब हकीकत में ढले जाते हैं। मंजिल की चमक क्या है ये उनसे पूछो जो राह में 100 बार जले जाते हैं। हर दर्द को लफ्ज़ों में पिरोना मुश्किल, कुछ जख्म खामोशी से पले जाते हैं। तहरीर में जब दिल की सदा उतरती, बेजान से कागज़ भी खिले जाते हैं। मिलती है कहाँ यूं ही सुखन की दौलत, अल्फाज तपिश में ही ढले जाते हैं। सिंह अपने तजुर्बों की रोशनी लेकर तकमील पे अशआर लिखे जाते हैं। तो ये थी गज़ल तकमील पे अशआर। और अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है नई शिक्षा। भेंट वार्ताकार हैं विजय लक्ष्मी।
1: विजय लक्ष्मी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार। जैसे कि आज के हमारे चर्चा का विषय है नारी शिक्षा, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा है क्या।
3: शिक्षा का साधारण अर्थ हम पढ़ाई लिखाई से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा वो है जो हमें अपने उत्तरदायित्व के बारे में सही ज्ञान देती है, हमारा क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, ये हमें सही तरीके से बताती है।
2: ये तो है। और नारी शिक्षा क्या है?
3: और जहाँ नारी शिक्षा की बात होती है, तो जिस तरह समाज के दो धुरी हैं या दो पहिए हैं कहना चाहिए, पुरुष और नारी, तो यदि एक समाज का एक अंग पुरुष शिक्षित होगा और नारी अगर अशिक्षित होगी तो शायद सही तरीके से चलना मुश्किल होगा। इसलिए नारी शिक्षा भी उतना ही महत्व रखता है जितना पुरुषों की शिक्षा। नारी शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाती है, सही संस्कार दे पाती है। और जैसा पुराने समय में लोगों की ये मान्यता थी कि लड़कियों को पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि बड़े होकर उन्हें घर ही संभालना है, चूल्हा चौका ही करना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि महिलाएं पढ़ी होंगी तो भले वो आर्थिक रूप से परिवार को सहारा न दे सके, लेकिन उनके घर को चलाने का तरीका, घर का बजट बनाने का तरीका ये अशिक्षित महिलाओं से काफ़ी अलग होता है। वे एक योजना बना सकती हैं परिवार को चलाने के लिए, परिवार के लोगों को बांध के रखने का एक अच्छा जरिया बन सकती है। परिवार ही पहला पाठशाला होता है और नारी जो एक माँ होती है पहली शिक्षिका होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी, और इस तरह से हमारा परिवार शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा।
2: पर हमारे क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि नारी शिक्षा के लिए बहुत सारी बाधाएं भी हैं।
3: हाँ, हमारे क्षेत्र में नारी की शिक्षा में काफ़ी बाधाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा मुझे लगता है कि गरीबी है, क्योंकि बेरोजगारी अधिक होने के कारण पढ़ाई का जो खर्च है ये हर परिवार अच्छी तरह से नहीं उठा पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परिवार में दो बच्चे हैं तो परिवार का खर्च भी चलाना और बच्चे की पढ़ाई पर भी खर्च करना एक बेरोजगार परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, परिवार के सदस्य बड़े होते हैं तो खर्च भी बढ़ता है, और बढ़ती हुई महंगाई में यदि प्रत्येक सदस्य कुछ कमा कर न लाए तो घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी कई विषम परिस्थितियां भी आती है जिसका सामना करना पड़ता है लोगों को।
2: बीमारी भी होती है तो कभी कुछ असामयिक ऐसे घटनाएं भी हो जाती है कि रुपयों की ज़रूरत होती है
3: करते हैं, और ये परिवार की ज़रूरत भी होती है। कई बार तो हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा भी सामने आती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और वो पढ़ने में काफ़ी आगे भी रहती हैं, लेकिन घर वालों का ये कहना होता है कि बड़े होकर के आखिर इसे शादी ही करना है तो इसकी शादी कर दी जाए। कम उम्र में शादी के बाद फिर बच्चियां आगे पढ़ नहीं पाती हैं, कई बार परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर उनका जो सपना होता है वो ऐसे ही चूर हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम अपनी बच्चियों को पढ़ने का सही मौका दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। कभी किसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे उसमें हारे नहीं, टूटे नहीं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं चला रखी हैं जिसमें महिलाएं अपने काम के साथ साथ या फिर अपनी उम्र ख़त्म होने के बाद जैसी महिलाएं कहती हैं कि अब हमारा पढ़ने का समय नहीं रहा, उसमें भी वो काफ़ी कुछ सीख सकती हैं, अपना इतना हुनर वो बना सकती हैं कि वे आत्मनिर्भर बन सके और परिवार को एक आर्थिक मदद या आर्थिक सहारा के रूप में परिवार के लिए वो खड़ी हो सकती हैं। आज ऐसी कई क्षेत्र है महिलाओं के लिए जिसमें वो अपना हुनर आजमा सकती हैं। सरकार इन सारी कार्यों की प्रशिक्षण की सुविधा रखी है, कई प्रशिक्षण निःशुल्क होते हैं और महिलाएं व्यवसाय शुरू करना चाहें तो इसके लिए उन्हें पूंजी के रूप में आर्थिक मदद भी दी जाती है। और इन सब के पीछे में एक ही मकसद है कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके,
2: तो हमारे क्षेत्र में इतने योजनाओं के बावजूद, इतने सुविधाओं के बावजूद भी नारी शिक्षा में जो बाधाएं आ रही है, इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं, यानी कि हम किस तरह से नारी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारी बहनों को?
3: इसके लिए तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही जागना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हमें अपने अधिकारों को मेरे हाथ में लाकर नहीं देगा। हमें खुद समझना होगा कि हमें पढ़ना है और अपने अधिकारों को जानना है। हमें ये जानना है हमारी क्या सुविधाएं हैं, और पढ़ करके हम और क्या क्या लाभ ले सकते हैं,
2: और अपने परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, हम अपने जीवन स्तर को और किस तरह से
3: बेहतर बना सकते हैं
2: और इसमें अपना किस तरह का योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में जागरूक होना होगा।
3: हाँ, इसमें हम बहनों को ही ये सोचने की बात है, क्योंकि कोई दूसरा अपने लिए नहीं सोचता है। यदि हमारे अपने घर में कोई हमारी बहन, माँ या भाभी अगर अशिक्षित है, या फिर उसके पास ऐसा हुनर है जिससे वो आगे बढ़ सकती है, तो हमें बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अपने आस पड़ोस में, समाज में ऐसा एक समूह बना करके लोगों के बीच में जागरूकता लानी चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़ें मिल करके, और लोगों का सोचने का तरीका, हमारे रहने का तरीका में काफ़ी सुधार होगा
2: और अपने आपको भी हम बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी हम बेहतर कर सकते हैं।
3: और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आत्मसम्मान रहेगा इसमें। जब हम अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, जानेंगे और एक आर्थिक सहारा बनेंगे समाज के लिए, तो इससे हमारा भी आत्मसम्मान रहेगा। यही मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों को जानिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई के प्रति, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहिए। क्योंकि एक स्वस्थ बच्ची ही एक स्वस्थ माँ बन सकती है, और स्वस्थ परिवार बन सकता है,
2: और स्वस्थ नागरिक भी।
3: हाँ,
2: तो आपसे इस बारे में बातें हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गी आम बोले रुड़ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलोरा एक गांव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बने आ है लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: तुम लोग बुरंग सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुखुरे में ना आइए यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिटका
6: अन्य तुम लोग बुंबई कोड़ा
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

शामीन, आप रोज़ाना सुनते हैं पूर्वाह्न 9 बजे अभिविधा कार्यक्रम। इस संदेश के साथ ही समाप्त हुआ आज का यह कार्यक्रम। इस समय पूर्वाह्न के ठीक 9:30 बज रहे हैं।

रस रंजन। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। इसका आगाज फिल्म बागवां के इस नगमे से, आवाज़ें ऋचा शर्मा और अमिताभ बच्चन की।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

अब आइए सुनते हैं फिल्म दीवानगी का ये नगमा। युगल स्वर हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की।

जीना सिर्फ मेरे लिए। यह है सुनकर शीर्षक गीत। आवाज़ें बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

ये है रसरंजन कार्यक्रम का आखिरी नगमा, संजय दत्त की आवाज़ में है। फिल्म का नाम है मुसाफिर।

0: इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का रसरंजन कार्यक्रम। पूर्वाह्न के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।
1: और ना ही तो गाने के लिए रुकेगा ना बजाने के लिए लेटेगा।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
1: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
1: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
1: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
1: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है।

0: यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आजा, आजा, अंदर आजा, आजा शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
5: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो बोलो।
5: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे

0: देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
2: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
2: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
0: भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
1: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: हाँ, ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
2: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ?
2: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
2: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
2: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
2: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
2: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
2: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
2: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
2: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
2: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
2: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग,
2: वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ? आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
7: लेकिन माँ,
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
8: जी
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
9: क्या मिल गया
8: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
9: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
8: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
7: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
8: स्टीफन स्टीफन माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
9: कुछ भी तो नहीं।
7: कुछ भी तो नहीं है।
8: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
7: वो तो है मगर
8: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
8: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
7: हाँ।
8: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
8: ठीक है आओ मेरे साथ।
9: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
6: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
10: अरे
11: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
10: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
12: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
10: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
12: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
10: आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
12: अरे भाई साहब जरा रास्ता
10: आगे आगे यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते।
13: अरे अरे वो देखो उस सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
10: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
13: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
10: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
13: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
10: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
13: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
10: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
13: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
10: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
13: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
10: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
13: अरे
10: देखो,
13: अरे हां अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया,
6: साथियों। ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
14: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी चाईबासा से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

जाते हैं। कहा भी गया है कि संतोष में परम सुख है। वास्तव में संतोष जीवन के प्रति आंतरिक सकारात्मक दृष्टिकोण है। यह भीतरी शांति का प्रतीक है और वास्तव में संतोष का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए परिणाम से खुद को विचलित नहीं होने देना।

जीवन शिक्षा में संतोष कोई मार्ग नहीं बल्कि जीवन यात्रा का आनंदमय अनुभव है। हम बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, जबकि संतोष हमें ये बताता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए मेरे पास जो है पर्याप्त है। यह एहसास जिंदगी के कश्मकश को कम करता है और साथ ही हमारी मानसिक ऊर्जा को बिखराव से बचाकर एकाग्रता की ओर ले जाता है। वर्तमान में जीना ही संतोष का एकमात्र मार्ग है। वर्तमान के क्षण का पूरा उपयोग करते हुए संतोष के साथ जीना एक मानसिक अभ्यास है जो हमें उन विचारों से मुक्ति दिलाता है जो हमें व्यर्थ के दुखों में उलझा कर रखता है। जीवन हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है और हर अनुभव आपको अपने भीतर के किसी नए हिस्से से मिलाता है। शायद जिंदगी के सबसे आँखों में सपने लिए जिंदगी से मिलते रहते हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम जुहार में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कार्यक्रम के अगले सेक्शन में चलते हैं और बात करते हैं मौसम के बारे में। झारखंड में अगले कुछ दिनों में के दौरान मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग राज्य केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं जिलों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो पिछले कुछ दिनों से गर्मी की तपिश तो ज़रूर कम हुई है, बीच बीच में बारिश होने के कारण मौसम भी सुहावना हो गया है, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी सतर्कता भी ज़रूरी है। आप हमेशा अपने साथ छाता या कुछ लेके साथ में चले ताकि बीच रास्ते में अगर बारिश हो जाए तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही इस तरह के मौसम में उमस भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। साथ ही एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। तो चलिए जानकारियों से भरे इस कार्यक्रम में आज के दिन क्या है खास, इसकी आपको जानकारी दे दें। आक्रमकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार होने वाले बच्चों के अधिकारों और पीड़ा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस महत्वपूर्ण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। वास्तव में इस दिवस की स्थापना मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के मासूम बाल पीड़ितों की पीड़ा देखते हुए की गई थी। समय के साथ इसका दायरा बढ़ाकर दुनिया भर के उन सभी बच्चों को शामिल कर लिया गया जो युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और किसी भी प्रकार की हिंसा, जैसे कि शारीरिक या भावनात्मक हिंसा के वो शिकार हो। इस दिवस के मनाने का मूल उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को पहचानना है तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराना है। अगर आज के दिन के बारे में इतिहास के पन्ने पलटे तो हम देखते हैं कि 4 जून 1917 को अमेरिका में पहली बार प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं हेनरी फोर्ड ने 4 जून 1896 को अपनी पहली गैस संचालित कार का सफलतापूर्वक परीक्षण अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में किया था। 4 जून 1964 को मालदीव के संविधान उस दिन बना था। साथ ही साथ 2003 में आज ही के दिन यानी 4 जून को डोमिनिकन गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा को मिस यूनिवर्स बनाया गया था। अगर आज के दिन की बात करें तो आज बहुतों का जन्म दिवस भी है, तो आज के दिन उन सभी लोग जिनका आज जन्म दिवस है उन्हें विशेष शुभकामनाएं। इस में सबसे पहला नाम आता है भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड एलन की, जिन्होंने आज ही के दिन 1902 में जन्म लिया था। वहीं प्रख्यात पर्यावरणविद, परोपकारी और पिंगल वाड़ा के संस्थापक भगत पूरन सिंह का भी जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ था। साउथ और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री प्रिया मणि ने भी आज ही के दिन 1984 में जन्म लिया था। और प्रसिद्ध भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी आज के दिन यानी 4 जून 1985 को जन्म लिया था। वहीं अनिल धीरू भाई अंबानी जो एक भारतीय व्यवसायी है, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था। वे रिलायंस समूह के अध्यक्ष थे, जिसे जुलाई 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग होने के बाद बनाया गया था। और इस फिर इस लिस्ट में अगर हम मशहूर अभिनेत्री और भारतीय सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नूतन की बात न करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 4 जून 1936 को भारतीय सिनेमा की दिग्गज और मशहूर अभिनेत्री नूतन ने भी जन्म लिया था। उन्हें उनके सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें बंदिनी, सुजाता

सीमा, मेरी जंग, अनाड़ी सहित अनेक फिल्मों में उनकी सदा बहार अदाकारी के लिए उन्हें जाना जाता है। तो आइए, उन्हीं पे फिल्माया एक बेहद ही अच्छा सा गाना आपको सुनवाते हैं।

हम सब चाहते हैं कि हम सब साथ में रहे, पर कुछ लोग हमें जीवन यात्रा में बीच में ही छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। पर अलविदा कहने के बाद भी वे अपने सत्कर्मों के कारण आज भी याद किए जाते हैं। तो बात करते हैं उनकी जिनका निधन आज के दिन हुआ था। आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध अंचिता लक्ष्मी पति का निधन आज के ही दिन यानी 4 जून 1962 को हुआ था। मुहम्मद अली विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज जिन्हें बॉक्सिंग लेजेंड भी कहा जाता है, उनका भी निधन आज के ही दिन यानी 4 जून 2016 में हुआ था। साथ ही हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का निधन भी आज के ही दिन 2016 में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलभा देशपांडे की। बातें तो अभी और भी है, पर हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को अब यहीं विराम देना होगा। तो इसीलिए कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त मेघना को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इसकी विशेष परिचर्चा की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है और संयोजन प्रभु शरण का है।
1: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है एक विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इस परिचर्चा के प्रतिभागी हैं झारखंड के वरिष्ठतम पत्रकार एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री बलवीर दत्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पत्रकारिता विभाग के प्रमुख प्रोफेसर देवव्रत सिंह, प्रेस क्लब रांची के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ चौधरी, और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी रांची के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी एवं कथाकार पंकज कुमार मित्र।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का जो सफर एक लंबे समय से चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए, और आज हमारे स्टूडियो में पत्रकारिता के क्षेत्र के कई दिग्गज उपस्थित हैं। सबसे पहले तो बलवीर दत्त जी, जो सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, शायद झारखंड ही नहीं भारत के भी, और सक्रिय पत्रकारों में अभी तक इस उम्र में भी सक्रिय हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो बलबीर दत्त जी उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में, आपको नमस्कार सर हमारा।
1: नमस्कार।
0: देवव्रत सिंह जी उपस्थित हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के जनसंचार और पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में देवव्रत जी। और शंभुनाथ चौधरी उपस्थित हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई अखबारों और पोर्टल्स में काम करने के बाद आजकल INS न्यूज़ एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो आपका भी शंभू जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष हो गए, जिस समय 1826 में ये 30 मई को उदंत मार्दंड का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो जुगल किशोर शुक्ल जी ने शायद ही सोचा होगा कि 200 वर्षों में ये जो छोटा सा प्रयास था उस समय का, वो इतना बड़ा रूप ले लेगा कि वो अब हजारों करोड़ के व्यवसाय के रूप में भी ये सामने आ जाएगा और पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता इतने बड़े फलक पर पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना भी शायद नहीं की होगी। तो ये जो समय बीता है हिंदी पत्रकारिता के विकास की, जो ये यात्रा हुई है, ये यात्रा कैसी रही है, इसमें कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, कैसे इसका स्वरूप बदला है, और ख़ास तौर पे जब शुरुआती दौर में सामाजिक राजनीतिक जागरण के उपकरण के रूप में ये इस्तेमाल हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े हथियार के रूप में ये काम इसने काम किया, और स्वतंत्रोत्तर भारत के नवनिर्माण के में भी इसका योगदान रहा, साथ साथ बहुत आलोचनात्मक रुख भी रहा पत्रकारिता का। बाद में 1990 के बाद जब से ये बाजार और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रचार हुआ और बाजार खोल दिए गए, तो उसके बाद से इसमें स्वरूप में बहुत आमूलचूल परिवर्तन पत्रकारिता के भी इसमें आया है। तो ये जो यात्रा है इस पर हम लोग आज बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले जो इस यात्रा के बहुत लंबे सफर में बहुत लंबे समय से साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर दत्त जी। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है, इतिहास तो कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसका जो स्वरूप आज़ादी के आंदोलन के समय जिस तरह से हुआ था और एक मिशनरी मोड में जिस तरह से मिशन के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, तो वो धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हुआ, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, इन 200 वर्षों की यात्रा को?
1: गांधी जी ने एक बार कहा था कि राष्ट्रवादी अखबारों के सहयोग और समर्थन के बिना हम आज़ादी की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो स्वाधीनता की लड़ाई में तो अखबारों का, भाषाई अखबारों का, खासतौर से हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उस समय जो स्थिति थी उस समय तो ये एक उद्योग या व्यवसाय नहीं माना जाता था, इसे तो एक तरह से एक साधना माना जाता था, और जो लोग अखबार शुरू करते थे, दिलचस्प बात यह है कि आज तो अखबार एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। उस समय कई अखबार ऐसे शुरू हुए थे कि अखबार का मालिक, संपादक और पत्रकार 3-in-1 एक ही आदमी है, पीर बावर्ची भिस्ती खर, पैकिंग भी वही करता था खुद ही। तो साप्ताहिक अखबार थे, मासिक थे, पाक्षिक थे, तो दैनिक तो काफ़ी बाद की बात है। तो ये उदंत मार्तंड जब शुरू हुआ तो वो तो बहुत काबिले तारीफ बात है कि किस तरह से वो अपने घर की पूंजी से जैसे तैसे शुरू कर दिया गया, वो 1.5-2 साल के आसपास करीब चला, तो उसका महत्व नहीं है जैसे गीता में

0: भगवान कृष्ण ने कहा है कि सफलता विफलता का उतना महत्व नहीं है, सक्सेस और फेलियर, उसके पीछे जो स्पिरिट है उसका ज़्यादा महत्व है। तो वो जो स्पिरिट थी उसको ऐसा ऐसा कुछ लोगों ने उसको ग्रहण किया और बाद में और भी अखबार निकले, लेकिन ज़्यादातर वो अल्पजीवी होते थे क्योंकि उनको कोई वित्तीय समर्थन प्राप्त नहीं होता था। लेकिन उनकी जो भावना रहती थी और जो देशभक्ति, और उस समय ज़्यादा जोर दिया जाता था सामाजिक चेतना पर,
1: जी
0: सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको दूर किया जाए। तो ये जो 20वीं सदी के शुरू में जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और उसके कुछ अरसा बाद ये गांधी जी, लोकमान्य तिलक वगैरह इसमें आए, उस समय जो है वो राष्ट्रवाद की लहर जो है वो पूरे देश में चलने लगी और राष्ट्रवादी अखबारों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस समय तो बहुत सहज ढंग से, जैसे आजकल है, अभी आजकल तो एडिटर लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, तो उस समय तो जैसे तैसे जहाँ भी जगह मिल जाए, वेतन भी तो कुछ होता नहीं था, वो तो खाली काम चलाऊ तौर पर रहता था जो भी था। और ऐसे भी क्रांतिकारी संपादक थे और उनको तैयार रहना पड़ता था कि कब जेल जाना पड़ जाए, और कई लोगों को जेल की सज़ा हुई भी
1: जी
0: और अखबारों से सिक्योरिटी मांग ली जाती थी कि आप इतना जमा कराइए, मतलब कि वो वित्तीय तौर पर परेशान करने के लिए।
1: जी
0: ऐसे बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक आज के एडिटर थे, उनके जेब में पिस्तौल रहता था, वो क्रांतिकारी थे।
1: जी
0: तभी सुनने से लोगों को बहुत ताज्जुब लगेगा, ऐसे तो भगत सिंह ने भी कुछ ऐसा पत्रकारिता की थी,
1: जी
0: गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था जो प्रताप जो है,
1: जी शायद
0: तभी
1: शायद ही कोई ऐसे नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे जो किसी अखबार से नहीं जुड़े थे या अखबार निकालते नहीं थे, उस दौर का तो यही
0: हाँ
1: है।
0: वो बात तो थी।
1: जी
0: और यह है कि जो अखबारों की जब बात है तो इसका भी थोड़ा सा उल्लेख किया जा सकता है कि अंग्रेजी के जो अखबार थे ब्रिटिश ओन्ड,
1: जी
0: उन लोगों को तो कोई वित्तीय समस्या नहीं थी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन वगैरह, तो इन लोगों को अच्छा खासा सर्कुलेशन था और वो प्रो ब्रिटिश जिसको कहते हैं थे,
1: जी
0: तो
1: तो
0: उनके साथ
1: जी
0: मुकाबले
1: उनको
0: की भी
1: सुविधा ज्यादा
0: स्थिति थी।
1: थी।
0: अच्छा,
1: जी
0: लेकिन अभी जैसे बाबूराव विष्णु पराड़कर की चर्चा चली तो वो क्रांतिकारी थे। और एक दिलचस्प बात है, अभी लोगों को लगेगा कि ये अजीब बात है, मानने लायक नहीं लगता है, बनारस से निकलता था दैनिक आज, बनारस तो ना तो उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो ना तो यूपी की राजधानी थी बनारस और ना देश की राजधानी थी, लेकिन बनारस से निकलते हुए भी उसका पूरे उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं उसका प्रभाव था और उसको नंबर वन अखबार माना जाता था। दिल्ली में हिंदुस्तान वगैरह बाद में शुरू हुए। तो ये दिलचस्प बात है कि अंग्रेज लोग थे तो बहुत चतुर, तो दैनिक आज में जो एडिटोरियल छपता था उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन वायसराय के टेबल पर रखा जाता था कि
1: जी
0: क्या लिखा है, उनको पता लगेगा कि वर्नैक्युलर प्रेस में क्या हो रहा
1: जी
0: है।
1: देवव्रत जी, लोग जिस तरह से सबने बताया अभी कि आज़ादी के आंदोलन में अखबारों की बहुत एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन स्वाधीनता के बाद देखते हैं कि अखबारों का जो नज़रिया है वो उस तरह से सामाजिक राजनीतिक जागरण के लिए बहुत नहीं रह गया। एक तरह से थोड़ा आलोचनात्मक रुख भी, जो राष्ट्र निर्माण की बात चल रही थी और राष्ट्र निर्माण के पक्ष में भी बहुत सारे अखबार लिख रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रुख भी अखबारों का होने लगा था। और यही वो समय था शायद जिसमें पूंजी का प्रवेश इसमें होता है, कुछ घराने इसमें आ गए थे इस क्षेत्र में। तो ये जो परिवर्तन घटित हुआ उससे अखबारों के चरित्र पर, या पत्रकारिता के चरित्र पर कहें, सिर्फ अखबार न कहें, तो पत्रकारिता के चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ा, क्या लगा कि उससे कितना परिवर्तन हुआ?
2: ये स्वाभाविक भी था, ऐसा नहीं कि ये कुछ गलत दिशा में हम चले गए थे। आज़ादी के बाद शुरुआती 2 दशक यदि आप देखें, अखबारों पर नज़र डालें, तो उनका, पत्रकारों का बड़ा सरकार के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति बड़ा सहयोगात्मक एक रुख था, और जो अच्छी चीज़ें राष्ट्र निर्माण में हो रही थी उनकी प्रशंसा भी हो रही थी। लेकिन 70 तक

0: 1970 तक आते आते जिस तरीके से विकास का जो सपना लेके आज़ादी आंदोलन के लोग चले थे, वो जब टूटने लगा या लोगों को लगने लगा कि
1: पूरा नहीं हो रहा, मोहभंग वाली स्थिति हो रही थी,
0: तो वो फिर पत्रकारिता में भी निकल के आना शुरू हुआ। भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ा, गरीबी दूर नहीं हो रही थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, तो उसकी आलोचना पत्रकारों ने शुरू कर दी। और उसका क्लाइमैक्स हम आपातकाल के दौरान देखते हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ एकदम पत्रकारों ने बिगुल बजा दिया और सरकार ने भी बड़ा दमन किया। अखबारों की बिजली काट दी गई और संपादकीय जो है खाली छोड़ दिए गए, या पत्रकारों को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में जेलों में डाल दिया गया। तो ये जो एक टकराव था सच को उजागर करने का, आम जनता के सामने बताने का जो जज्बा था पत्रकारों के बीच में, वो आपातकाल का पूरा जो दौर है वो इस बात का गवाह है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि बाजार की शक्तियां कैसे प्रवेश करती हैं, वो 80 के बाद की बात है। निसंदेह आज़ादी के बाद धीरे धीरे कुछ बड़े घराने वो अखबारों में और मीडिया में एंटर कर गए थे और उन्होंने अपने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं निकालने शुरू कर दिए थे। तो उनके हित और सरकार के साथ उनके जो संबंध हैं उससे कुछ कुछ पत्रकारिता का चरित्र जो है बदलने लगा था। कुछ प्रो गवर्नमेंट हैं तो कुछ एंटी गवर्नमेंट हैं, लेकिन पत्रकारिता का वो बड़ा सुनहरा दौर है। यदि हम 80 तक की बात करें तो 90 के दौर में जब उदारी जब शुरू हुआ तो सीधे तौर पे बाजार की शक्तियां और बाजार की झलक जो है वो एकदम साफ स्पष्ट तौर से दिखती है, जिसमें विज्ञापन कंपनियां और खासकर मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है। और कहा जाता है ना कि उस समय फिर धीरे धीरे पत्रकार जो है प्रोफेशन से एक प्रकार से बिजनेस का रूप इख्तियार करने लगा। और एक मालिक ने तो अखबार के ऑफिस में कह ही दिया था कि हम लोग जो हैं वो समाचार के उसमें नहीं है, बल्कि हम लोग तो बिजनेस में है, न्यूज इज ए प्रोडक्ट फॉर अस।
1: शंभु जी, ये जिस दौर की बात देवव्रत जी कर रहे हैं, 90 के बाद उदारीकरण का जो दौर चला हमारे यहाँ, एलपीजी का जब दौर आया, तो उसके बाद तकनीक में भी बहुत तेजी से परिवर्तन घटित हुए और तकनीक और पूंजी दोनों ने मिलकर के, जो बाजार की शक्तियां हैं उन लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन पत्रकारिता में वैचारिक रूप से भी इन लोगों ने ले आए और एक ऐसा एक प्रोडक्ट के रूप में आने लगा। बहुत सारे इंटरनेट की सुलभता हो गई तो डेटा का खेल होने लगा। तो इस तरह से जो एक परिवर्तन, आप तो न्यूज़ पोर्टल वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये जो परिवर्तन हुआ इससे आपको लगता है कि पत्रकारिता के मूल चरित्र पर एक तरह से बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया?
2: हाँ, देखिए, जब तकनीक और पूंजी इन दोनों का प्रवेश पत्रकारिता में हुआ, या कहें कि पत्रकारिता को संचालित करने वाली शक्तियाँ जो हैं वो तकनीक और पूंजी, इसके बाद इसके चरित्र में व्यापक बदलाव जो है वो आया। इससे सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, मैं समझता हूँ। पत्रकारिता की गति बढ़ी, पत्रकारिता का विस्तार हुआ, पहुँच बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर जो मूल्य थे वो जरूर तिरोहित हुए। और आज जब हम 200 साल का जश्न एक तरीके से मनाने के लिए जुटते हैं और ये उसकी गौरव गाथा पे का एक आख्यान जो है वो लेकर हम लोग सामने आ रहे हैं, तो ये समय असल में मुझे लगता है कि उत्सव से ज़्यादा सवालों से मुठभेड़ का ज़्यादा है। आज आत्ममंथन जो है पत्रकारिता, जिसको ये माना जाता है, जो पत्रकार राजनीति को, समाज को जो दिशा दिखाने वाली एक विधा थी, आज उसके लिए एक आत्ममंथन का समय है, खुद से सवालों से मुठभेड़ का समय है कि भाई पत्रकारिता जिन उद्देश्यों के साथ शुरू हुई थी और जिस पे हम गर्व करते हैं, क्या वो पत्रकारिता आज की तारीख में है? और ये जो बदलाव हुआ, मैं ये कहूँगा कि देखिए, बाजार के उदारीकरण का जब दौर आया 91 के बाद, तो बाजार ने पूरे समाज का परिदृश्य बदला और उससे पत्रकारिता भी तो भाई इसी समाज का उत्पाद है। अगर आप उत्पाद के तौर पे देखते हैं तो ये भी अब परिवर्तित नहीं है। तो जिन मूल्यों पे हम अब चिंता जिताते हैं और जो कहते हैं कि पत्रकारिता का जो स्वरूप 200 साल पहले था या आज़ादी के बाद था या आज़ादी के दौर जो जिसकी चर्चा की और जिन संघर्षों की बात हम करते हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर जैसे समाज में बदलाव आया, जैसे पारिवारिक मूल्य तिरोहित हुए, जैसे तमाम तरीके, ये पत्रकारिता में भी घटित हो रहा है। और हम इसी को लेकर चिंतित हैं कि भाई पत्रकारिता शुरुआत हुई थी तो बड़ा पवित्र पेशा मानी जाती थी और आज की तारीख में जो है हम कहाँ हैं, किस मुकाम पे हैं, तो ये जरूर सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि तकनीक ने इसका चेहरा जरूर बदला है, तकनीक ने इसकी ताकत जरूर इसको बख्शी है पत्रकारिता को, लेकिन इसके साथ इसके जो वैल्यूज हैं और जो विश्वास था लोगों का, जो यकीन था, वो कम हुआ है, और इस पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
1: जी बलवीर सर, आपने तो उस समय का भी दौर देखा है जबकि पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों का बड़ा असर था और पत्रकारों में भी ये असर था, लेकिन अभी के समय का सबसे बड़ा जो संकट है वो लगता है कि पत्रकारिता के लिए साख का जो संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं, विश्वसनीयता का जो संकट है, ये कैसे हुआ कि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत जो निष्पक्षता और एक तरह से सत्ता से दूरी जो थी, वही पहले पत्रकारिता का मूल सिद्धांत हुआ करती थी, लेकिन अब जो है पत्रकारिता बिल्कुल बटी हुई सी नजर आती है। एक ऐसा वर्ग पत्रकारों में भी या अखबारों का भी या मीडिया का भी हो गया है जो कि सत्ता से ज़्यादा साथ रहने में ज़्यादा विश्वास रखता है, और उसी के बरक्स एक दूसरा वर्ग भी हो गया है जो उसके विपक्ष के रूप में वो दिखने की कोशिश करता है। तो ये जो बंटवारा हो गया है, इससे कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर असर हो रहा है, लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ रहा है। ये बंटवारा कैसे हो गया?
3: ये तो विश्वव्यापी समस्या हो गई है, क्योंकि जो अभी बात चली 1991 के बाद उदारवाद का जमाना जो आया, जिसको हिंदी में बाजारवाद कहा जाता है, तो ये अब एक उद्योग व्यवसाय का रूप ले लिया है। पहले क्या होता था कि जैसे अमृत बाजार पत्रिका, इस अखबार का बहुत बड़ा रोल था स्वाधीनता आंदोलन में, तो 500 रुपया में शुरू हुआ था। उस समय का 500 रुपया तो खैर उसका भी बड़ा महत्व था, लेकिन लोग शुरू कर देते थे अखबार, संपादक भी मालिक भी वही है। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अगर एक दैनिक पत्र शुरू करना चाहते हैं, एक अमेरिकन किताब मैंने पढ़ी एक्सप्लोरिंग जर्नलिज्म, तो उसमें दिया कि क्या आप कोई डेली न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको बताता हूँ, क्या आपके पास कोई सोने की खान है, तभी शुरू कीजिए। तो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो है ना, बहुत बढ़ गया है, और अखबार अभी चल रहे हैं तो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसी कारण अखबारों को मौका मिल गया। अखबार कैसे चलते हैं, अखबार का जो कॉस्ट प्राइस होता है, लागत जो है, अभी जो अखबार 3-4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया में बिक रहा है, उसकी लागत तो हो सकता है 10-12-15-20 रुपया तक हो, केवल विज्ञापन के कारण है। विज्ञापन उसको सब्सिडाइज करते हैं, और विज्ञापन या तो सरकार से मिलते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से, कॉरपोरेशन से, तो आप विज्ञापन के बिना अखबार नहीं चला सकते हैं, उसके लिए मारामारी होती है। और सब ये प्रदर्शित करते हैं कि जैसे टीवी पर है TRP, किसका ज़्यादा है, व्यूअरशिप क्या है
1: जी।
3: तो उसके कारण जो बहुत से पत्रकारिता के मूल्य हैं उनका बहुत ह्रास हो गया है, और खबरों को तो अभी ऐसे परोसा जाता है जैसे जब पहले होता था बम्बैया फिल्म बोलते थे, उसमें चना जोर कर
1: मसाला दे
3: मसालेदार
1: दे करके जी जी,
3: तो उसी ढंग से खबरें पेश की जा रही हैं। तो उस हालत में आपकी विश्वसनीयता की जहाँ तक बात है, भारत ने विदेशों में भी कुछ अर्सा पहले अमेरिकन अखबार है लॉस एंजलिस टाइम्स, उसने एक सर्वे किया था, तो उसमें कि मीडिया की क्या विश्वसनीयता है, तो उसमें 50-60% लोगों ने कहा कोई विश्वसनीयता नहीं है। भारत नहीं अमेरिका की बात है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, ये तो बहुत खराब बात है। और ये अभी जो चर्चा हुई कि इमरजेंसी का उल्लेख किया गया, तो उसके बाद तो ये है कि ये एक जैसे एक बहुत बड़े अखबार के मालिक से पूछा गया, कहा गया कि ये आपका जो सोशल एप्लीकेशन है उसका ध्यान रखिए। बोला हम कोई सोशल एप्लीकेशन नहीं मानते, ये हमारा बिजनेस है। अगर आप सोशल एप्लीकेशन नहीं मानते हैं तो उस अखबार के जो अलग अलग संस्करण थे हिंदी अंग्रेजी में, उसने शुरू किया प्रिंट लाइन में देना एडिटर बॉम्बे मार्केट, एडिटर दिल्ली मार्केट, ऐसे शुरू किया। वो काफ़ी अर्सा तक ये चलता रहा, जब बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी तो फिर उसको बंद किया गया। तो एडिटर का महत्व तो अभी बहुत घट गया। किसी समय क्या था, अखबार का एडिटर वाज द किंग एम्परर, अखबार का मालिक भी एडिटर को मानता था और एडिटर को पूरी स्वतंत्रता रहती थी।

0: सर जो बात कह रहे हैं कि जो संपादक नाम की संस्था है वो उस संस्था का बहुत ह्रास हुआ और ज्यादा जो है जो पैसे ला सकता है विज्ञापन ला सकता है उन्हें ही एडिटर
1: अभी तो कई अखबारों के एडिटरों को ये कहा जाता है कि आपको कितना ये कितना का विज्ञापन जुगाड़ करना है।
0: ये खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जिस तरह से एंकर्स का जो व्यवहार और जिस तरह से चीज़ें बदली हैं या जो थंबनेल वगैरह दिखाते हैं उसमें आप बहुत अजब अजब तरह के उसमें थंबनेल रहते हैं जो कि सांप्रदायिक हिंसा को भी वो बढ़ावा देते हैं उस तरह से। तो अखबारों का जो एक मूल चरित्र है और ख़ास तौर पे ये तकनीक के प्रभाव के बाद से जो फेक न्यूज़ और डीप फेक न्यूज़ और इस तरह की जो चीज़ें अब आ गई हैं इससे कितना लगता है आपको आने वाले समय में कितना बड़ा ये खतरा हमारे पत्रकारिता के लिए है?
2: इसमें पंकज जी मैं देखता हूँ कि तकनीक ने काफ़ी सारी शुभ चीज़ें भी की हैं। जैसे पिछले दो दशक में हमारे अखबारों के पेजों की संख्या बढ़ गई है, हमारे अखबार जो हैं टेलीविज़न का दबाव ही कहें लेकिन वो रंगीन हो गए हैं, वो ग्राफिक्स और फोटो के मामले में बड़े आकर्षक भी हो गए हैं। एक ज़माना था जब केवल ब्लैक एंड वाइट अखबार होते थे। तो ये अखबार का साइज बढ़ा है, खबरों की संख्या बढ़ी है, तो डिस्ट्रिक्ट एडिशन का चलन भी पिछले दो दशक में हुआ जिससे ज़्यादा खबरें दूर दराज की जो खबरें हैं उनको भी स्पेस मिलने लगा। आपने जो मुद्दा उठाया है इन्फॉर्मेशन में जो गड़बड़ी की बात है फेक इन्फॉर्मेशन की, वो थोड़ा चिंता का विषय है कि पिछले एक दशक में खासकर जो डिजिटल क्रांति के बाद जिस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन कहें, मैं उसको फेक न्यूज़ नहीं कहूँगा, फेक सूचनाएं जो हैं झूठी सूचनाएं, वो किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए या मोबाइल के जरिए आम लोगों तक है और उसके बहाव में उसकी चपेट में कुछ कुछ पत्रकार भी आ रहे हैं। जल्दबाजी में हमारे पत्रकार भी गलत खबरें वो अखबारों में छाप रहे हैं या फिर टीवी पे दिखा रहे हैं, तो उससे साख गिरी है। लेकिन उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था पाठकों में और दर्शकों में, तो उन्होंने ये पूछा कि रेडियो टेलीविज़न और अखबार में सबसे विश्वसनीय कौन है, तो पाठकों ने कहा कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अखबार है, टेलीविज़न पे उनका भरोसा कम है, सोशल मीडिया पे भरोसा कम है, क्योंकि पाठक जो है 24 घंटे बाद अखबार लेता है और निसंदेह अखबार में गलत खबरें छापने की या छपने की आशंका बहुत कम है, पाठक से पहले पत्रकार उसको चेक कर लेते हैं, समय रहता है, जबकि टीवी के लोग थोड़ा हड़बड़ी में चलाते हैं खबरों को। तो ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और टेक्नोलॉजी इस समय तो लीड कर रही है। मैं कहूँगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और अब तो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक नए किस्म का माहौल एकदम बना रही है, तो चुनौती आएंगी और पत्रकारों को और मीडिया के लोगों को उनसे डील करना चाहिए अच्छे से।
0: जी शंभू जी, ये जो AI के बारे में बात कर रहे हैं, ये AI बहुत बड़ी एक चुनौती के रूप में पत्रकारिता के सामने आया क्योंकि उसको वेरीफाई करने का, वेरिफिकेशन का कोई उसमें माध्यम होता नहीं है लोगों के पास कि कैसे इन खबरों को वेरीफाई किया जाए जो AI के जरिए भी फैलाई जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये नहीं लगता कि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू जो जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, ये इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि लोकतंत्र के इसका बहुत आवाज़ों का बहुत विस्तार हुआ है, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो हाशिए की आवाज़ें थी वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया कभी भी उनकी आवाज़ें रिकग्नाइज नहीं करता था या एंटरटेन नहीं करता था, वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और सिटीजन जर्नलिज्म जिसको कहते हैं कि कोई भी आदमी एक मोबाइल के साथ जो है कोई ना कोई समाचार कोई ये कर सकता है और उसको वायरल कर सकता है और उसको खबरें लोगों तक जा सकती हैं, तो ये एक सकारात्मक पहलू भी इसमें आप देखते हैं?
3: नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। पहली बात आपने कही कि तकनीक और AI का, देखिए जब तकनीक और AI आपको नियंत्रित करने लगे खतरा तब है कि पूरी तरह आप उनके नियंत्रण में आ जाएं, उनके ग्रीप में आ जाएं।
0: जी,
3: जब नियंत्रण की शक्ति विवेक से उपजती है और वो विवेक अगर आप कायम रख पाते हैं तो कभी भी तकनीक जो है वो बहुत बड़ी चुनौती। जब कंप्यूटरीकरण का दौर आया था तब भी हम लोगों ने समझा था कि भाई पत्रकारों का काम टाइपिस्ट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या उनका जो मूल लेखन की जो क्षमता है वो जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हमने उन पर नियंत्रण किया या हमने उस तकनीक को अडॉप्ट किया तो बेहतर एक प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दे पाए, थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से सूचनाएं पहुंचा पाए। आपने जो बात कही उम्मीद की किरण वाकई वही है कि सोशल मीडिया से जो जो आवाज़ें आ रही हैं, खतरे हैं ज़रूर हैं, एडिटरलेस माध्यम वो हो गया है, जहाँ कोई संपादक नाम की संस्था नहीं है कि किसी व्यक्ति की जो आवाज़ आ रही है या कोई व्यक्ति आपको जो सूचना पहुँचा रहा है या कोई बात पहुँचा रहा है आप तक, वो सही है, उसमें तथ्य है या नहीं है, इसको जांचने वाली कोई संस्था एडिटर जैसी संस्था है नहीं। खतरा ये जरूर है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि कई लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत शानदार पत्रकारिता की एक लीक जो है वो परंपरा शुरू की है। और ऐसी चीजें कि जिनको आप ठीक कह रहे हैं कि अब मुख्य धारा की जो मीडिया जिसको हम लोग मानते हैं, वहाँ बाजार का दबाव इतना है कि कई बार जानबूझकर भी खबरें जो हैं वो नज़रअंदाज की जाती हैं, कई बार उन वर्गों की आवाज़ जो है उस जगह नहीं मिलती है उनको मुख्य धारा की पत्रकारिता में जो आनी चाहिए। पर्यावरण का संकट है, पेड़ों का कटना, तमाम तरीके के संकट जो हैं वो उसको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि बाजार का दबाव ऐसा है, वो उनके अगर वो खबरें छपेंगी वो नैरेटिव बनेगा तो जो अखबार निकाल रहे हैं उनको परेशानी पैदा होगी, जो मीडिया चला रहे हैं उनको परेशानी पैदा होगी। ऐसी स्थिति में ये आवाज़ें जो हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रही है, जिसको आजकल हम लोग इंडिविजुअल जर्नलिज्म भी कह रहे हैं, तो वहाँ से एक उम्मीद की किरण तो जरूर दिखती है कि जिन मूल्यों की हम चिंता करते थे कि या पत्रकारिता जिनकी आवाज़ मानी जाती थी वो आवाज़ अब दब नहीं रही है, ये बहुत सकारात्मक पक्ष है आज की पत्रकारिता
0: जी। तो इस चर्चा से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो 200 साल का सफ़र है ये सिर्फ एक उत्सव मनाने का ही अवसर नहीं है, एक इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्मालोचन का भी ये समय है। इसका भी इसके बाद की तकनीक बदल गई है, कागज़ से स्क्रीन, स्क्रीन से आई एंकर, इस तरह का सफ़र एक लंबा सफ़र चला है, लेकिन जो पत्रकारिता की आत्मा है वो तो हमेशा तथ्य, निष्पक्षता, जन सरोकार और लोकतंत्र को बचाने के जितने भी उपकरण हैं उस पर ही ये पत्रकारिता का भविष्य।
1: एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो हम लोगों की परिचर्चा शुरू हुई प्रिंट मीडिया से, हिंदी का पहला अखबार, तो प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता कंपैरेटिवली ज़्यादा है अभी भी सारी दुनिया में,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो फिल्टर होकर ही आमतौर पर न्यूज़ निकलता है। और मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया का महत्व जो है वो बना रहेगा, जैसे AI वगैरह जो है उसका अपना लाभ भी है, AI बहुत कुछ कर सकता है, AI सपने नहीं देख सकता। सपना जो है ना, जैसे आज़ादी भी एक सपना थी, उस समय लगता था कि मुश्किल ही आज़ादी मिलना, तो सपने नहीं देख सकते AI। इंसान का जो दिमाग है उसके आगे कितना भी आप मैकेनिकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कर लीजिए। कुछ हफ्ता पहले एक मुख्यमंत्री से बात हो रही थी मेरी, तो उसने कहा कि कितना भी TV देख लो, रेडियो सुन लो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जब तक अखबार नहीं पढ़ते हैं चैन नहीं मिलता है। तो ये अखबार का महत्व,
0: ये अच्छी बात कही सर ने कि सपना नहीं देख सकता है AI, और लोकतंत्र को बहाल रखना भी एक सपना ही है हमारे लिए, तो उस सपने को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे ये आगे भी 200 वर्षों तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहे, इस दिशा में क्या किया जा सकता है, ये पत्रकारों पर है। और कितना भी बाजार का दबाव हो और इस तरह की चीज़ें, तकनीक का दबाव हो, लेकिन जो नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का जो साहस मीडिया या पत्रकारिता दिखाता है उसको हमेशा दिखाते रहना होगा, क्योंकि मीडिया की साख ही लोकतंत्र की एक सही कसौटी भी है। तो आप सब स्टूडियो में आए और हम लोगों ने पत्रकारिता के 200 वर्षों के सफ़र और आगे आने वाले समय में जो इस पर संकट हैं और क्या हो सकता है इसके बारे में बातचीत की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत में भाग लेने के लिए, बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इस परिचर्चा के प्रतिभागी थे झारखंड के वरिष्ठतम पत्रकार एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री बलवीर दत्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पत्रकारिता विभाग के प्रमुख प्रोफेसर देवव्रत सिंह, प्रेस क्लब रांची के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ चौधरी, और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी रांची के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी एवं कथाकार पंकज कुमार मित्र। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रशांत कौरव की और संयोजन था प्रभु शरण का। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी

0: से सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुना विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद में पहली फरमाइश आई है जतुका किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, और गोंदा टाउन काके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह सिद्धि जायसवाल और अनुप्रिया जगत ने राजेश रोशन के संगीत में इंदिवर का लिखा, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में गाया इस गीत की फरमाइश की है। फिल्म का नाम है आखिर क्यों। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में अगली फरमाइश आई है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से इस गीत की. इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. इस गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित. ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन, नेताम और कुसुम नेताम. तो आइए चल सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत.

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने कभी हाँ कभी ना फिल्म से इस गीत की फरमाइश की है। इस गीत के गीतकार है बजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है जतिन ललित और गायक कलाकार है कुमार सानू।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म गैम्बलर से। और दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम उदास होते हैं, तनाव में होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तब हमारा हाथ सीधे किसी मिठाई, चिप्स या पसंदीदा स्नैक की तरफ बढ़ जाता है। और हाँ, हो सकता है आपको भूख नहीं हो, लेकिन इमोशनल ईटिंग यानी भावनात्मक कारणों से खाने की आदत हो। दरअसल हमारा शरीर और मन दोनों अलग अलग तरह की भूख महसूस करते हैं। शरीर की भूख धीरे धीरे बढ़ती है और पेट भरने पर खत्म हो जाती है, लेकिन भावनात्मक भूख अचानक आती है और अक्सर हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर मजबूर कर देती है। और सच यह है कि कुछ खाने की चीज़ें हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हैं। घर के गरम गरम पराठे जिन पर ढेर सारा मक्खन, सुबह की चाय जिसमें चीनी कुछ ज्यादा ही, और फिर दाल मखनी और
1: पंख थोड़े ही हैं।
2: लेकिन माँ,
1: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी,
1: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
1: ला,
3: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे, मिल गया मुझे,
1: क्या मिल गया
2: मुझे, माँ माँ ओ माँ,
1: क्या मिल गया, क्या मिल गया
2: मुझे, मिल गया,
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया
1: सब, क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया, हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन, स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
3: धुआं?
2: हाँ, इस कमरे के धुएं को देखो।
3: हाँ?
2: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ,
3: क्या उड़ रहा है,
2: बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ हाँ? भी तो नहीं,
4: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो।

0: हाँ, ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
1: हाँ,
0: उड़ रही है ना?
1: वो तो है, मगर
0: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ,
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें, तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
5: हाँ भाई, भीड़ तो है,
4: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यहाँ भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा। पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: आओ, यही ठीक रहेगा।
4: आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे, वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
4: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ,
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
4: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
4: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
4: कर दिया बच्चों ने।
5: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
4: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
4: बहुत अच्छे, बहुत देखो, गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे एनसीईआरटी। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
10: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड

0: सकता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The discussions involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy, security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Earlier, External Affairs Minister S. Jaishankar called on Ms. Rodriguez. In a social media post, Dr. Jaishankar said, India values her long-standing commitment to the India-Venezuela relationship. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, and Transportation. President Draupadi Murmu has said India and Lao People's Democratic Republic share close civilizational ties reflected in the common heritage of Buddhism and the Ramayana. She added that this year both nations are celebrating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations, which is a significant milestone in the bilateral relationship. Welcoming Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Lao PDR Thongsawan Pomvihane yesterday at Rashtrapati Bhavan, President Murmu noted that in October 2024, Prime Minister Narendra Modi visited Lao PDR to participate in the ASEAN-related summits. Yesterday, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the 10th India-Lao PDR Joint Commission meeting with Mr. Pomvihane in New Delhi. The 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC is underway in Shillong, Meghalaya. Union Home Minister Amit Shah is chairing this session. Union Minister of Development of Northeastern Region Donor Jyotiraditya Sindhya, Meghalaya Governor C.H. Vijay Shankar, Chief Minister Conrad K. Sangma, Union Minister of State for Donor Shukanto Mojumdar, Union Home Secretary Govind Mohan and Secretary of the Ministry of Donor Sanjay Jaju are present in the meeting. Governors and chief ministers of other northeastern states are also present in the meeting along with several other dignitaries. The Northeastern Council, established under the Northeastern Council Act 1971, serves as the apex regional planning body for the northeastern region. It plays a pivotal role in fostering coordinated development and strengthening cooperative federalism in the region. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today visited Max Hospital in Saket to meet those injured in the Malviya Nagar fire incident yesterday. She interacted with the injured and their family members and also reviewed the ongoing treatment with the attending doctors and directed officials to extend all necessary assistance. An ex gratia of 10 lakh rupees has been announced to the next of kin of each deceased. The seriously injured will receive 5 lakh rupees. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. The Uttar Pradesh government has decided to provide free bus ride to aspirants of state police constable exams to their examination centres. Chief Minister Yogi Adityanath gave instructions to the concerned officials regarding this in a review meeting. The recruitment examination for civil police constable and equivalent posts would be conducted on June 8th, 9th and 10th in two shifts each day. Mera Yuva Bharat, My Bharat has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in 1 week, with over 390,000 participants who completed the entire length of the quiz. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia received the certificate in a ceremony held in New Delhi today. The record was achieved through the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz from the 25th to the 31st of October last year. The inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship is set to kick off this evening at Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. Benchmark domestic equity indices were trading marginally down in afternoon trade today. The Sensex lost 35 points to 74,311 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी चार टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में महिला नियमित योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
2: तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से योग महिलाओं को निशुल्क सिखाते हैं ताकि हमारा कम्युनिटी, हमारा समुदाय जो है निरोग रहे और हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
1: उन्होंने कहा कि स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद अब वे अन्य लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैं। वहीं सविता कुमारी ने भी योग से स्वास्थ्य में सुधार होने का अनुभव साझा किया और लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की।
3: मेरा नाम सविता कुमारी है, मेरा सीओ जी नियापुर है। योग बहुत अच्छा चीज है, योग करना चाहिए। योग से क्या है कि शरीर हल्का लगता है, मेडिसिन छूट जाती है और शुगर है, थायराइड है, ये बीपी है, सब कंट्रोल रखती है।
1: केंद्र सरकार के मुस्कान कार्यक्रम के तहत रांची का सदर अस्पताल अब नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन में अस्पताल ने 96.1% अंक हासिल किए। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पेडियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक ओपीडी को भी उत्कृष्ट अंक मिले। अस्पताल प्रशासन ने इसे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। जेटेट में भाषाओं के चयन को लेकर गठित समिति की बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जेटेट केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों की स्थायी भाषाई और सांस्कृतिक समझ का आकलन करने वाली पात्रता परीक्षा है। वहीं मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने की वकालत की।
4: वैसे जिले जहां जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है वहां कम से कम आप हिंदी भाषा को जो तो अवश्य जोड़ी। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि संख्या बल पर किसी नीति का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो धरातल की वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर वो कोई सापेक्ष निर्णय लेंगे।
1: जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेटेट के कुछ अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनुपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई होने की सूचना पर ऐसा निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उत्तर रेलवे ने अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच वर्जन 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया है। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कवच नेटवर्क 445 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो भारतीय रेल में किसी एक खंड पर स्थापित सबसे बड़ा कवच सिस्टम है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता को और मजबूत करेगी। कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कोडरमा थाना के सामने रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। एसडीओ निर्मल सोरेन ने बताया कि मामले में अब तक 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।
5: घटना हुई है यहाँ कोडरमा जिला के लिए बहुत ही खतरनाक है और घटना की गंभीरता को देखते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी नामजद अभियुक्त है मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए।
1: जमशेदपुर के टाउन हॉल सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बूथ लेवल एजेंट BLA प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
6: और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है, जो स्वरूप है, अब BLA 2 से प्रारंभ होगा। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी, और हमारा जो सबसे मजबूत जो कमेटी होगा वो कमेटी हमारा बूथ कमेटी होगा, जिसके माध्यम से हम राज्य के विकास को और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुँचा पाएंगे।
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 128 अंक बढ़कर 74,474 पर और निफ्टी 43 अंक बढ़कर 23,449 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में शुरू हुई झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले दिन कोल्हान डायनामोज और संताल चैलेंजर्स ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनामोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में संथाल चैलेंजर्स ने पलामू वॉरियर्स को 6 विकेट से पराजित कर दिया। JSCA पदाधिकारियों ने कहा है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस लीग में भाग लेने वाली सभी 4

टीमों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में भारतीय जूनियर टीम का सेमीफाइनल मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। भारत ने पूल ए में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम चार में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान की टीम पूल बी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की नजर पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाने और खिताब जीतने की अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोस और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी चार टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में आज सुनते हैं शोभा गुरटू को।

इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी यही संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं कुछ गजलें। पहली गजल मिताली सिंह की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री

0: में उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजुमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहले

0: आज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम बिहानी से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: जय भारती, बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम जय भारती की आगाज नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म क्रांति के इस गीत से करते हैं। इस गीत के गीतकार है संतोष आनंद और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम जय भारती की अगली पेशकश साहिर लुधियानी का लिखा, रवि के संगीत में, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म आंखें से ये गीत।

अभी आपने रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में फिल्म बॉर्डर फिल्म से ये गीत सुना। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिब्स 2 की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत और पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी उपजाऊ खेती योग्य जमीन है, जिससे उनकी आजीविका जुड़ी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर जामताड़ा में विशेष उत्साह है। भाजपा जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने इसे विकास का स्वर्णिम युग बताया है।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 12 साल लगातार सेवा पूर्ण हुई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, जिससे समय का भी बचत हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक से लोन लेकर समूह के माध्यम से व्यवसाय शुरू किया तथा सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला।
0: वहीं ग्रामीण महिला सुलेखा मोहली ने कहा कि उज्ज्वला योजना और बैंक ऋण से महिलाएं सशक्त हुई हैं। अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की हिंदेगढ़ा पंचायत में महिला किसानों के लिए जलवायु स्मार्ट और जैविक कृषि पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कम लागत में टिकाऊ खेती के जरिए उत्पादन और आय बढ़ाना है। केंद्रीय वर्षा आधारित उपरीत भूमि धान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव मंगल प्रसाद और डॉक्टर सोमेश्वर भगत ने महिलाओं को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की विस्तृत जानकारी दी। चतरा के इको पार्क में आज विश्व पर्यावरण दिवस के सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तहत भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 श्रेणियों में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रकृति बचाने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में पुलिस विभाग की आपातकालीन प्रणाली मजबूत करने के लिए डायल 112 के तहत 36 आधुनिक बाइक शामिल की गई है। डीआईजी किशोर कौशल और एसपी कपिल चौधरी ने इन जीपीएस और सायरन से लैस गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के अनुसार इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित होगा।
2: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से गश्ती सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, दोपहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिससे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके गाड़ी जैसे जीपीएस लगाया गया।
0: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 के आयोजन की घोषणा की गई। यह 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव आगामी 26 से 28 जून तक रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के सचिव पुलन मित्रा और नवीन सहाय ने बताया कि इस फेस्टिवल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल झारखंड के फिल्मकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का ही प्रदर्शन किया जाएगा। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं मॉडर्न पेंटाथलॉन नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बाइथल इवेंट में आरती कच्छप ने रजत और आतासी कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ी होटवार के JSSPS स्विमिंग सेंटर की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, दिन का समय थोड़ा आराम करने का होता है और साथ में आप जानते ही है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है और बच्चों को नींद कहाँ। अभी तो ना उन्हें स्कूल जाने का टेंशन है और ना ही कोई होमवर्क का, उनका तो सारा दिन खेलने में चला जाता है। तो आप भी बच्चों के साथ थोड़ी बच्चे बच जाए और गीतों भरा कोई भी खेल जरूर खेले। कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंताक्षरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अंताक्षरी की शुरुआत करने की बात कहें तो आज भी वही पारंपरिक तरीके से ही वही अंताक्षरी का वो लहजा याद आ जाता है कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जी हाँ, म म से आप भी कोई गाना सुननी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, क्या आपको भी यही गाना याद आ रहा है?

सच में अगर प्यार से बोले गए शब्द किसी भी इंसान के मन में उतरते हैं और चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बहुत ही सार्थक गीत है ये। खैर, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला शब्द ये गीत था, एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, ल से कोई गीत।

0: सच में कभी कभी हम जिंदगी में बहुत सोचते हैं और सिर्फ सोचते ही है, परंतु सोचने से नहीं, आत्मविश्वास से भर कर निर्णय लेने से जिंदगी चलती है। और अगली बार जब भी सोचे, हमेशा सकारात्मक सोचे।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: इस संदेश के बाद कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी यहीं संपन्न होता है. हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं. अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज पर थोड़ी ही देर में.

0: कार्यक्रम रांची मेलोडीज की आगाज बालिका वधू के इस गीत से करते हैं, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है आरडी बर्मन। इस गीत के गायक कलाकार है अमित कुमार।
1: अच्छे लगते हैं

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में आनंद बख्शी का लिखा अगला गीत फिल्म दोस्ताना से। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले।

पंकज उदास की आवाज में, समीर का लिखा, नदीम श्रवण के संगीत में अगला गीत फिल्म साजन से।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ब्लैकमेल से ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बड़ा दिलवाला से ये गीत। इस गीत के साथ रांची मेलोडी से ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। पलामू जिले के राजहरा रेलवे स्टेशन पर आज कोयले से लदी एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण अपलाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी हुई है। डाल्टनगंज स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। सरायकेला खरसावां में भाजपा के 12 साल विश्वास के विकास

के जन कल्याण के महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। जिला अध्यक्ष हरिकृष्णा प्रधान ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वृक्षारोपण कर किया जाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आज अपनी मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रमोशन में घेराव आरक्षण लागू करने के लिए मांग की गई। मोर्चा के अनुसार इस घेराव का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। सिमडेगा के ठेठई टांगर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीब 8.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर यहां पुड़िया बनाकर बेचते थे। जामतारा प्रखंड कार्यालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सुविधा केंद्रों को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया है। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि जून महीने में पूरे जिले के प्रखंडों और वृद्धा आश्रमों में विशेष शिविर चलाकर बुजुर्गों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम विज्ञान जगत, जिसमें आज चर्चा होगी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर, जो पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है। वार्ता होगी बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर खतरा। भेंट वार्ताकार होंगे प्रोफेसर V.S. राठौर और भेंटकर्ता होंगे बसंत कुमार, साथ ही सत्येंद्र नाथ बोस की जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के वाचन सहयोग प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितने फायदेमंद है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर कितना बड़ा खतरा है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। और सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन का जो उपयोग है वो पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है इसके बारे में। वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल और गैस की जो समस्या है उससे घिरे हुए हैं और हर दिन हमें इससे जूझना पड़ रहा है। आज इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इन सभी चीजों के होने के बावजूद हम क्या ऐसी चीज है जिसे अपना

0: रखकर पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और पेट्रोल डीजल और गैस में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उससे बच सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। आज दुनिया भर में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी बन चुका है। यही कारण है कि अब दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल या डीजल के बजाय बिजली से चलने वाली बैटरियों का उपयोग करते हैं। इनमें कार, बस, बाइक, स्कूटर और यहाँ तक कि ट्रक भी शामिल हो चुके हैं। इन वाहनों के उपयोग से पर्यावरण को बहुत सारे लाभ तो होते ही हैं, लेकिन हमें पैसा भी बचाने का अवसर मिल जाता है। सबसे बड़ा जो लाभ है वो है वायु प्रदूषण में कमी आना। पारंपरिक वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अलग अलग प्रकार के हानिकारक गैस निकलते हैं जो पर्यावरण को तो प्रदूषित करते ही हैं, हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों से चलने के दौरान कोई धुआं नहीं निकलता, इसमें शहरों की हवा अधिक साफ बनी रहती है और किसी प्रकार की कोई बीमारी भी हमें नहीं लग सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। वैज्ञानिकों की अगर हम बात माने तो जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको नियंत्रित की जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा आवाज करती है। इससे सड़कों और शहरों में शोर कम होगा और लोगों को शांत वातावरण भी मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा दक्षता के मामले में भी काफी बेहतर है। ये कम ऊर्जा में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इनका पर्यावरणीय लाभ भी बढ़ जाएगा और अगर हम बात करें तो हम जितना पैसा पेट्रोल डीजल में खर्च कर देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें तो हमारा वो पैसा बच सकता है और हम उस पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही है। चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी लोगों को दी जा रही है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। यदि हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियों को हम बेहतर और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। तो हमने अभी बात कर ली कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है और कितने जरूरी हो चुके हैं ये। अब बारी है भेंटवार्ता की और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर भी एस राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सुदूर संवेदन एवं भू सूचना विभाग BIT मेसरा में। सर, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: नमस्ते जौहर।
0: और सर, जिस विषय पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इस चीज पर हम लोगों ने बात की है और इस बार बात करने का सबसे खास जो वजह है वो ये है कि 5 जून को हम सभी इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमें इस विषय पर थोड़ा गंभीर होकर बातचीत करना जरूरी है। और जैसा कि पर्यावरण से संबंधित विषय है तो हम पर्यावरण प्रदूषण क्या है, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है यही है, और इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रकार क्या है, इसके बारे में बताएं।
1: तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे बहुत ही संवेदनशील विषय पर वार्ता करेंगे और इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो ये पृथ्वी है, जो एकमात्र प्लानेट है जिसपे मानव जीवन है, और ये आज के समय में हमारी ही गतिविधियों से मानव जीवन खतरा महसूस कर रहा है, जो कि पर्यावरण मुख्य तौर पे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो पर्यावरण बना हुआ है जिसमें हमारे जीवन सुरक्षित रहता है, जिसकी वजह से आज वो ही खतरे में है और उसके खतरे की वजह हम सब का जीवन शैली है मुख्य तौर पे। और उसमें हम अगर देखें तो मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी वायु को, जो कि एक जीवन प्रणाली के लिए मुख्य अवयव है, उसको हम कैसे दूषित कर रहे हैं, और हम इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारी जब वायु दूषित हो रही है तो उसकी वजह से आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
0: जी।
1: और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है मतलब पृथ्वी का जो हमारे प्लेनेट का आनुपातिक जो तापमान है वो करीब करीब हमने अभी तक इंडस्ट्रियलाइज प्री इंडस्ट्रियलाइज जो बेस लाइन है 1850 के बाद में लास्ट 150 साल के अंदर हमारी पृथ्वी की तापमान 1.3 to 1.4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसकी लिमिट हमने निर्धारित कर रखी है वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। जिस हिसाब से हमारी

0: गतिविधियां चल रही है, और अगर समय रहते हम चेते नहीं
1: हम्म,
0: तो ये हम क्रॉस कर जाएंगे, और अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं तो वापस उसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी को।
1: जी
0: इसलिए आज के समय में ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं और हमारे जीवन को हम सुरक्षित बनाएं इस पृथ्वी पे, कि ये वातावरण हमारे रहने लायक रहे।
1: हाँ, आपने जिस तरीके से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है दिन
0: जी
1: प्रतिदिन उसके बारे में जिक्र किया, और
0: जी
1: इस साल की जो गर्मी है वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली
0: जी
1: है, तो ये हर साल कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है इसमें।
0: जी मैं वही बताना चाहूंगा कि जो हमारे वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके साथ साथ हमारे वातावरण में जहरीली गैसेस, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ने से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे ग्लेशियर पिघलने से हमारा समुद्र का तल जो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, और हर साल ये पहले करीब करीब 2 से 3 मिलीमीटर बढ़ रहा था, अभी
1: जी
0: 4 मिलीमीटर पर वर्ष बढ़ने लग गया, और ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो समुद्र के जीव है और समुद्र के पास में रहने वाले कोस्टल एरियाज में रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे प्लानेट की है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि आज के समय में हम हर चीज के लिए प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं,
1: जी
0: सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। आप सभी चारों तरफ अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि किस तरह से प्लास्टिक हम बिखेर रहे हैं, चारों तरफ हमारे गांव घर तक प्लास्टिक पहुंच गई है, और हम अपनी सुविधा के लिए उस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस पृथ्वी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और वो हमारे समुद्री जीवों के लिए, हमारे गाय और
1: पशु
0: जितने भी
1: पक्षियों
0: पशु
1: के लिए।
0: पक्षियों के लिए, वो सब के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
1: आपने प्लास्टिक की बात की है, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण,
0: जी
1: जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण,
0: जी
1: ये जो प्रदूषण है तीन,
0: जी
1: मानव जीवन पर इनका कैसे असर देखा जा रहा है और इससे क्या नुकसान हो सकता है
0: जी
1: पृथ्वी को और मनुष्य को?
0: जी आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहरीकरण हो रहा है, ग्रामीण हमारी जीवन शैली थी उसको हम छोड़ के आज शहरों की तरफ जा रहे हैं। हाँ, शहरों की तरफ जाने का एक कारण है, वहां
1: जी
0: पर हमें रोजी
1: रोजगार के
0: रोटी
1: लिए।
0: मिलती है, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम आज इतने सारे हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, वाहन यूज कर रहे हैं, हमारे हर काम के लिए वाहन यूज कर रहे हैं। आप सड़कों पर देखोगे तो कहीं पे जगह नहीं है, और हम चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइज, हमारी सुविधा के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया,
1: जी
0: इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ आप देखिए कितना वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और ध्वनि प्रदूषण के वजह से और वायु प्रदूषण की वजह से हमारे लंग्स के अंदर डिजीज हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे आज के हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं, जवान लोगों में हार्ट अटैक हो जा रहे हैं,
1: जी
0: और कितने रेस्पिरेटरी लंग्स 60 साल से ऊपर के आदमी और बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसमें हमारे पृथ्वी की 99% पॉपुलेशन है वो PM 2.5 से अफेक्टेड है। PM 2.5 एक पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं, बहुत ही फाइन डस्ट जो हवा में चली जा रही है हमारी गतिविधियों की वजह से, वो हमारे श्वसन तंत्र में जा रही है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं सुना था वो आज हमारे देखने को मिल रही है।
1: तो इन
0: जी
1: सभी चीजों को हम नजरअंदाज करके फिर भी वही काम हर दिन हर समय
0: जी
1: करते रहते हैं,
0: जी
1: और सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है, लेकिन
0: जी
1: आम व्यक्ति जब तक इसमें सहयोग नहीं करेगा अपने स्तर पर,
0: हाँ,
1: तब तक तो ये ठीक करना शायद अकेले बस की बात
0: मुश्किल
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: मुश्किल
1: लेकिन
0: है।
1: प्लास्टिक की बात आपने जो की
0: हाँ
1: थोड़ी देर पहले की थी, तो
0: जी
1: आम तौर पे हम सभी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं
0: जी
1: और कहीं ना कहीं उसके दोषी हम भी हैं,
0: हाँ
1: तो प्लास्टिक को छोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है जिससे पर्यावरण को फायदा हो और हमें किसी तरह की बीमारी ना हो?
0: बिल्कुल, प्लास्टिक को छोड़ने के लिए मैं ये कहूंगा कि आपके स्थानीय स्तर पे जो भी पुराने हिसाब से हम कपड़ा का बैग लेके चलते थे, वनों से जो हमको हमारे जो डिकम्पोज होने वाली चीजें हैं वो उसके बैग हम यूज करें, और सिंगल यूज प्लास्टिक, खास तौर पे अभी सभी की अपील यही है कि जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल की और फेंक देते हैं हम, उस प्लास्टिक को तो कम से कम मैं ये निवेदन करूंगा सभी इस पर्यावरण दिवस पे कि आप उसको छोड़ दीजिए,
1: जी
0: और आप पुराने जो हमारा समाज में थैला यूज करते थे, बैग इस्तेमाल करते थे, वो चीजें यूज करें, और स्थानीय स्तर पर जो बनने वाली चीजें उनको यूज करें, स्थानीय स्तर पर बनने वाली चीजों को यूज करने से हम पर्यावरण को नुकसान कम कर रहे हैं, जिसका कारण है कि दूर में कहीं पे कोई वस्तु बन रही है और वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां से यहाँ लाने में उसको जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो रहा है उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए हम स्थानीय स्तर की चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो वो कम होगा। और जो प्लास्टिक की आप बात पूछ रहे थे, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं और अपने आसपास फेंक देते हैं, वो वहां से जाके हमारे जलाशयों में चली जाती है और जलाशयों में जाने के बाद में वो हमारे पानी, जो पीने वाला पानी है, आज की डेट में बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये पता चला है कि हर पीने के पानी में प्लास्टिक कंटेंट है, बहुत ही छोटा माइक्रो लेवल का प्लास्टिक कंटेंट है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे भोजन प्रणाली में प्लास्टिक घुस चुका है। इसलिए ये पर्यावरण दिवस पे आप सभी को शपथ लेना चाहिए कि कम से कम मैं सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूंगा, और प्लास्टिक इस्तेमाल अगर करनी है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे। मुख्य तौर पे तो मैं यही कहूंगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं है सिंगल यूज का, तो खास तौर पे।
1: लेकिन आमतौर पे जैसे कि मार्केट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बंद पैकेट के खाने की चीजें आती हैं वो सारी प्लास्टिक में है। लेकिन प्लास्टिक का कोई दूसरा उपाय लोगों
0: हमारे जीवन में ये प्लास्टिक घुल चुकी है और उसको हम दूर करना हमारे लिए अभी संभव नहीं दिख रहा नहीं है। और इसका अल्टरनेट लोग निकाल रहे हैं, विकल्प इसका निकाल रहे हैं, दूसरी इस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिसको फिर उसकी मृदा बन जाए, भूमि में वापस मिल जाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज का मतलब जो प्लास्टिक हमने एक बार ली और फिर फेंक, दोबारा इस्तेमाल नहीं होती है, वो प्लास्टिक तो हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसकी जगह हमें अपने बैग इस्तेमाल करने चाहिए।

0: देखें कि ये मैंने पेड़ लगाया था और ये आज बड़ा हो रहा है, तो उससे हमारी धरती के ऊपर हरियाली बढ़ेगी, और हरियाली बढ़ेगी तो वायु प्रदूषण कम होगा, और ये फॉसिल फ्यूल जो है जिससे हमारे वाहन चल रहे हैं, दुपहिया चौपहिया जो भी वाहन है, ये हम धरती से पेट्रोल गैस निकाल के और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उनको चला रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और इसको कम से कम इस्तेमाल करें, जहां जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, इसका ऑल्टरनेट तो हमको खोजना पड़ेगा।
1: तो इस साल 5 जून को पर्यावरण दिवस है, और अगर आप पर्यावरण दिवस को इस तरह से मनाना चाहते हैं कि पृथ्वी को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, तो एक पौधा लगाएं और उस पौधे को न सिर्फ लगाएं बल्कि उसे पानी दें, उसे सुरक्षित रखें और एक बड़ा वृक्ष बनने तक उसकी रक्षा करें, तभी आपका पौधा लगाने का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा और पृथ्वी को शायद आप थोड़ी सी मदद दे पाएंगे। तो सर, आपने ढेर सारी जानकारी दी, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सभी को जोहार।
1: अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में थे डॉक्टर वी एस राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर बीआईटी मिश्रा, सुदूर संवेदन भू सूचना विभाग। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और आज हम पर्यावरण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के तौर तरीके और बहुत सारी चीजों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में भी बात करेंगे और उनके बारे में आपको जानकारी देंगे जिनके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद भी है। और हम जिस महान वैज्ञानिक की आज बात करने वाले हैं उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बोस के साथ बच्चों वाले परिवार में सबसे बड़े सत्येंद्र नाथ बोस थे। इनके पिता ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के तकनीकी स्टाफ के सदस्य के रूप में काम करते थे। बोस हाई स्कूल और कॉलेज दोनों में बहुत बुद्धिमान छात्र के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इन्होंने 1909 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मेरिट सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंटरमीडिएट विज्ञान कार्यक्रम में दाखिला लिया, जहां इन्हें प्रफुल्ल चंद्र रे, शारदा प्रसन्न दास और जगदीश चंद्र जैसे ज्ञानियों ने पढ़ाया था। बोस ने 1913 में संयुक्त गणित में विज्ञान से स्नातक के साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। सत्येंद्र नाथ बोस को 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम, बोस सांख्यिकी की नींव विकसित करने और बोस कंडेंसेट के सिद्धांत के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी। अगर हम इनके उपलब्धियों के बारे में बात करें तो विश्व परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर का एकमात्र विज्ञान कार्य 1937 में सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित किया गया था। भारत सरकार ने 1954 में बोस को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें 1959 में एक विद्वान के रूप में देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ जब उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नामित किया गया। इस पद पर वे 15 वर्षों तक कार्य करते रहे। नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की स्थापना 1986 में सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में भारत सरकार की संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा साल्ट लेक कलकत्ता में की गई। बोस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और इंडियन फिजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उपाध्यक्ष के तौर पर भी ये कार्य कर चुके और इन्हें 1958 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में भी चुना गया था। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इन्हें गॉड ऑफ पार्टिकल के नाम से भी पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है और ये काफी प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में इनका नाम शामिल है। तो हमारे देश में ऐसे महान महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने खोज और आविष्कारों से पूरी दुनिया को ये बताने का काम किया है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है। और हमारे देश में ऐसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिनके द्वारा किए गए आविष्कार और खोजों ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया है सोचने का। तो आज हमने आपको बता दिया कि सत्येंद्र नाथ बोस ने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था और किन किन चीजों के लिए उन्हें दुनिया याद करती है। और अब बारी है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में।

0: तो प्लास्टिक सर्जरी आज की दुनिया में किए जाने वाले सबसे अधिक सर्जिकल ऑपरेशनों में से एक मानी जाती है। सामान्य तौर पर प्लास्टिक सर्जरी क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि शरीर की पुनर्स्थापना या परिवर्तन करने वाली एक शल्य चिकित्सा विशेषता है। दुनिया भर में ऐसी कई हस्तियां रही हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद नाटकीय रूप में बदल गईं। शुरुआती लोगों के लिए सर्जरी को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, नाम पुनर्निर्माण सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। यदि किसी व्यक्ति को मानव शरीर के किसी हिस्से का पुनर्निर्माण यानी कि उसे फिर से ठीक करना है या कार्य प्रणाली में सुधार करना है तो वे पुनर्निर्माण सर्जरी से गुजरते हैं। पुनर्निर्माण सर्जरी में क्रैनियोफेशियल सर्जरी, हाथ की सर्जरी, माइक्रो सर्जरी और जलने का उपचार शामिल है। वहीं दूसरी ओर शरीर की खूबसूरती को निखारने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है। ज्यादातर लोग अपना रूप बदलने के लिए ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। पॉप के किंग और मशहूर स्टार माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी बदल गए थे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, इसलिए आप उनके बारे में जानते भी होंगे और प्लास्टिक सर्जरी कितनी फेमस है ये भी जानते हैं। प्राचीन लोगों के लिए सर्जरी कोई नया विषय नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार प्रमुख रूप से भारत में हुआ था ऐसा माना जाता है। प्राचीन सर्जन सुश्रुत ने 6वीं शताब्दी में प्लास्टिक और मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वैज्ञानिक सुश्रुत संहिता ने पहली सर्जरी की थी। उस समय वे शल्य चिकित्सा उपकरणों के रूप में चकमक पत्थर, कांच जैसा एक चमकदार भूरा या काला पत्थर हुआ करता था जिसका वो उपयोग करते थे, और मछली के दांत और तेज कांटे सर्जरी करने के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी भारतीयों के द्वारा 2000 ईसा पूर्व से ही की जाती थी। इस तकनीक में योगदान देने में सर्जन सुश्रुत संहिता ने प्रमुख भूमिका निभाई और आज आधुनिक सर्जरी केवल एनेस्थीसिया की खोज और शरीर में संक्रमण की रोकथाम के कारण ही संभव है। प्लास्टिक सर्जरी की पहली पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा का ही ग्रंथ है। यह 5 खंडों में बटा हुआ है। इसमें पहले खंड में 46, दूसरे खंड में 16, तीसरे में 10, चौथे में 40 और पांचवें भाग में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में सर्जरी के लिए जरूरी औजारों यानी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी लिखा गया है। जैसे एक भाले नुमा आकृति के औजार हैं जो टूटी हुई हड्डियों एवं अनावश्यक मांस को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे करीब 101 यंत्रों की जानकारी उसमें दी गई है, जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है। स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाक यंत्र और उप यंत्र। तो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्लास्टिक सर्जरी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है और इससे बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवाना या करना इतना आसान नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी देखने में जितनी सुविधाजनक और सरल लगती है, लेकिन उससे कहीं इसमें कठिनताएं हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं लोगों के मन में और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कैसे हुई थी, किस देश में इसका जन्म हुआ था और इनके जो प्लास्टिक सर्जर थे सबसे पहले वो कौन थे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली और हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी हमारा जो दायित्व है उसे निभाना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ एक पौधा नहीं लगाना है, बल्कि उस पौधे को पानी देना है, उसे सींचना है, उसे सुरक्षित रखना है और बड़ा होने तक उसकी रक्षा करनी है। तभी हम पर्यावरण को अपना योगदान सही तरीके से दे सकते हैं। इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर आप भी एक पौधा लगाएं और उसे सुरक्षित रखें, उसे बड़ा करें ताकि वो दुनिया में अपने योगदान से इस पृथ्वी को बचा सके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग था वसंत कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए हम आपको बता दें, अब से लेकर रात्रि 11:10 तक प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युवा श्रोताओं को संबोधित होगा कार्यक्रम युवाणी, जिसे आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 का समय होगा हमारे औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक के लिए। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं योगेश्वर राम और आकांक्षा सिन्हा। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 6 बजे आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुनेंगे पहले किसान वाणी। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे होंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर जिले में आजकल और 7:15 का समय होगा हमारे दैनिक कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा के लिए। इस कार्यक्रम को आज आप सुनेंगे संताली भाषा में। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। 7:45 पर आप सुनेंगे सुर भारती, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर शैलेश मिश्र की वार्ता आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 बजे का समय होगा फिल्म संगीत के लिए और 8:10 पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण

8:45 से समाचारों का प्रसारण आरंभ होगा। आप सुनेंगे समाचार संध्या 8:45 पर, News@9 रात्रि 9 बजे, और उर्दू में समाचार सुनेंगे आप 9:15 पर। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। हमारे दिल्ली केंद्र की ही प्रस्तुति होगी 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स, और 10 बजे से प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे पुनः हिंदी में समाचार सुन सकते हैं आप, और 11:05 पर होंगे समाचार अंग्रेजी में। मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर, लेकिन FM पर हमारे प्रसारण को आप सुबह 6 बजे तक सुन सकते हैं। ये था हमारा आज के संध्याकालीन प्रसारण का संक्षिप्त विवरण।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विजय पथ का ये गीत साधना सरगम की आवाज में। फैज अनवर ने लिखा है इसे और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म अंदाज से। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की है, बोल है हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जय किशन का।

बिल्कुल सही है दोस्तों, दिल उसे दो जो जहाँ दे दे, जहाँ उसे दो जो दिल दे दे। मतलब रिश्तों में अगर वफादारी हो, लोग ईमानदार हो, तभी ये काम आपको करने हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको फिल्म आखिर क्यों का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। शब्द हैं इंदिवर के, संगीत राजेश रोशन।

मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। अभी आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बहार के का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी और मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ सरगम यहीं समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। धनबाद रेल मंडल के रजहरा स्टेशन पर हुए मालगाड़ी हादसे के कारण रांची मंडल की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आज खुलने वाली रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, जबकि कल सासाराम रांची एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। इसके अलावा रांची चौपन एक्सप्रेस आज बरवाडी स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाओं के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आज बोकारो सर्किट हाउस में धनबाद और बोकारो जिले से जुड़ी 20 शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान बोकारो डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथु सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरिंद्र कुमार मौर्य ने आज गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट 1 महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गोड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायभाषा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:03 हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में। आज की इस सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए करते हैं आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है युगल गीतों से। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संध्या के 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार, और संध्या के 6:02 पर प्रसारित होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। संथाली कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे संध्या के 6:30 पर। संध्या के 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, और संध्या के 7:10 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय होगा स्वास्थ्य सेवा, और आज आप इस कार्यक्रम की 4वीं कड़ी सुनेंगे। सात बजकर 45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। रात्रि के 8:00 का प्रसारण समय रहेगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से प्रसारित News@9 का प्रसारण होगा रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। गजलों का कार्यक्रम महफिल, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि के 10:00 का। 10:30 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहां से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM के 101.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चायबासा केंद्र। आइए करते हैं आज के कार्यक्रम गुलदस्ता की शुरुआत, और सुनवाते हैं आपको आज के इस कार्यक्रम में युगल गीत। तो कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला युगल गीत फिल्म यस बॉस से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, और धुन है जतिन ललित की।

मैंने प्यार किया। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से, आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं युगल गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला युगल गीत, फिल्म ये वादा रहा से। आवाजें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और धुन है राहुल देव वर्मन की।

फिल्म ये वादा रहा के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाए युगल गीत, और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो से की संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सुनीता हांसदा और
1: आशा मणिगुप्ता जोहार।
0: कैसे हैं किसान भाइयों एवं बहनों? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारे

0: साथ हमारी मित्र है आशा, और आइए जानते हैं उनका हालचाल। कैसी हैं आशा जी?
1: सुनीता जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, और इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और हम हमारे किसान भाई बहनों को भी कहेंगे, गर्मी भी बढ़ रही है, कभी बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में खुद का सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। तो इसी आशा के साथ आशा जी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हर बार की तरह जैसे हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियों के साथ आते हैं, सबसे पहले हम करते हैं चर्चा। तो आज भी हमारा जो है चर्चा का विषय है, किसान भाइयों बहनों, आप सभी शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि 1 जून से 30 जून तक जो है हमारा खेत बचाओ अभियान चल रहा है। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत मिट्टी के सेहत सुधारने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और फसल सुरक्षा के लिए देश भर में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गांव-गांव जाकर व्यवहारिक समाधान और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, जिस तरह से हम हमारे स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, हम हमारे शरीर में पनप रहे रोगों के प्रति जो है उसका उपचार करते हैं, उसी तरह हमें अपने खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा संरक्षण का भी जो है बचाव करना है, उनका भी उपचार करना है।
1: बिल्कुल सुनीता जी।
0: और खेत बचाओ अभियान में सबसे पहले अगर हम मृदा संरक्षण की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि मिट्टी की उर्वरकता को जो है बढ़ाना है। जितने भी हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो नकली कीटनाशकों और उर्वरकों की पहचान करके ही किसानों की जो है आय में हम वृद्धि करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे मिट्टी में सही खाद या जो भी हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं अगर सही मात्रा में सही रूप से जो है उसका इस्तेमाल करें तो हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी बनी रहती है।
1: बिल्कुल सुनीता जी। और इसके साथ ही इसकी सही मात्रा में हमें कितना देना है उसका जानकारी रखना भी बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल। और इसके लिए जो है हमें विशेषज्ञों द्वारा जो है मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। इसके लिए खेत की आवश्यकता अनुसार संतुलित खाद, जैविक या प्राकृतिक खेती और सही फसल चक्र को जो है अपनाना हमें जरूरी है। और जन संरक्षण, हर खेत तक ज्ञान पहुंचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन, अगर हम कहें तो टपक विधि जो सिंचाई होती है, और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा जैसी जल बचत तकनीकों को जो है हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर हम मृदा संरक्षण की बात करें तो आशा जी, सबसे पहला अगर हम मिश्रित खेती यानी जो हमारा फसल चक्र होता है, एक ही फसल को बार बार ना लगाकर अगर हम अलग अलग तरह के जो है फसल का इस्तेमाल करते फसल उपजाते हैं एक मिट्टी पे, तो इससे हमें क्या होता है कि सभी फसलों में अलग अलग तरह से जो है पोषक तत्व की जरूरत जो है पूरी होती है।
1: बिल्कुल सुनीता जी। और इसके साथ ही जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: और इसके साथ ही जो कीट पतंगों का प्रकोप है वो भी कम रहता
0: कम
1: है।
0: होता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ समुच्च जुताई, जैसे ढलान वाली जगहों पर ढलान के आड़े जुताई करने से बारिश के पानी का जो बहाव होता है वो भी कम होता है और मिट्टी कटने से जो है बचती है, इससे भी हमारा मृदा संरक्षण होता है। और साथ ही साथ सीढ़ीदार खेत, अगर हम पहाड़ी इलाके या अधिक ढलान जगह पर सीढ़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ी बनाकर अगर हम खेती करते हैं तो इससे भी हमारा मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि हमारा ऊपरी मिट्टी जो ऊपरी खेत से जो मिट्टी बह करके नीचे वाले हमारे खेतों में चली जाती है, तो फसल का जो है मिट्टी का जो भी पोषक तत्व होता है उसकी प्राप्ति वो कर पाता है। रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, मल्चिंग, इन सभी विधियों के द्वारा हम अपने मृदा के जो है स्वास्थ्य को, उसके टिकाऊ को हम बनाए रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सुनीता जी। और इसके साथ ही मिट्टी कटाव को रोकना बहुत जरूरी है, मृदा संरक्षण में सुधार, मृदा नमी का प्रबंधन तथा प्रदूषण को रोकना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: हम अगर हमारे खेत की बात करें, खेत बचाओ अभियान, तो खेत के माध्यम से ही हमें सभी फसल प्राप्त करते हैं, मिट्टी के माध्यम से ही, तो मिट्टी को बचाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें प्रदूषण से रोकना बहुत ज़रूरी है। अब हम रासायनिक अगर ज़्यादा दवा का इस्तेमाल करते तो मिट्टी में वो घुल

0: जाता है
1: बिल्कुल
0: और इससे जो फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, और वो सीधा जब हम उसे सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है।
1: बिल्कुल, और अगर हम अगर कर सकते हैं तो हमारा जो पारंपरिक खेती होता है उसके जरिए भी हम अपने मृदा संरक्षण को बनाए रख सकते हैं। तो आशा जी, हमारा चर्चा का विषय और भी है और जानकारियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम हमारे किसान भाइयों को सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
9: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के भेंटवार्ता में, जो आज के मेहमान भेंटवार्ता में हम सुनाते हैं आपको किसी विषय पर चर्चा के साथ जो है संवाद। तो आज का जो चर्चा का विषय हमारा है भेंटवार्ता के रूप में, बत्तख पालन से लाभ, और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं गुरबा महतो। उनके साथ बातचीत कर रही हैं आशा मणि। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
10: बत्तख पालन से होने वाले लाभ, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
11: हम सरायकेला प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के हड़ुआ कंदागड़ा ग्राम के गुरबा महतो।
10: आपका हम कार्यक्रम में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
11: जोहार।
10: आप कृषि के साथ बत्तख पालन, मुर्गी पालन किए हुए हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे बत्तख पालन से होने वाले लाभ। बत्तख पालन आप कब से कर रहे हैं?
11: बत्तख पालन हम कर रहे हैं 6-7 साल से ज्यादा हो गया है
10: जी।
11: तो और भी खेती बाड़ी भी करते हैं हम लोग, बत्तख पालन बोल के नहीं, बत्तख पालन ऐसे ये रख रखे हैं
10: जी।
11: धूप का दिन में तो थोड़ा बत्तख पालन में दिक्कत होता है पानी के लिए, और धूप का दिन में एक तो गड्ढा कर देते हैं हम लोग, गड्ढा करके वहाँ हम लोग दिन भर वहीं पर वो लोग रहता है।
10: अच्छा, ये जो आप बताए बत्तख को, बत्तख के लिए पानी के लिए गड्ढा चाहिए, तो वो गड्ढा आप लोग लगभग कितना तैयार करते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं, जो घर में, घर के पास अगर करते हैं?
11: गड्ढा हम लोग लंबाई चौड़ाई 7-8 फीट करते हैं, और जो गहराई रहता है, गहराई हम लोग 3-4 फुट करते हैं।
10: अच्छा।
11: अब पानी जो बाहर नहीं जाने के लिए हम लोग जो वो प्लास्टिक, ये जो मिलता है वो प्लास्टिक को वहाँ हम लोग बिछा देते हैं पहले, और मोटर ये में पानी को वहाँ हम लोग भर देते हैं।
10: अच्छा।
11: तब प्लास्टिक में क्या होता है ना, पानी को जमीन में टनता नहीं है
10: जी,
11: इसीलिए मैंने प्लास्टिक दे देते हैं। उसके बाद मोटर पाइप से लेके टुलू पंप ये से हम लोग पानी वहाँ भर देते हैं, तो वहाँ सब बतख सब वहाँ खेल सकते हैं। पानी का ही तो ज्यादा ये है बतख का।
10: बिल्कुल।
11: हाँ, अगर पानी रहेगा तो वो लोग खेलते रहेगा, डूबते रहेगा वहाँ पूरा दिन भर वहीं पर। और पानी का दिन में तो ऐसे ये होता ही है, धूप का दिन में ज्यादा दिक्कत है हम लोग का, जैसे बारिश का दिन में ज्यादा दिक्कत नहीं है
10: जी,
11: धूप का दिन में ही ज्यादा दिक्कत है। हर ये में वो प्लास्टिक को ये करना पड़ता है हम लोग को, और चेंजिंग करना पड़ता है हर साल। गड्ढा भी थोड़ा ये करके झल झुल के थोड़ा ठीक कर देते हैं, बारिश में तो ये हो जाता है ना, इधर उधर से पानी आके।
10: बिल्कुल।
11: हाँ, तो गड्ढा को सही करके हम लोग, जैसे धूप का दिन आ गया तो हम लोग गड्ढा को थोड़ा ये करके और बतख पालन का हम लोग खेती करते हैं।
10: अच्छा, ये तैयार करते हैं
11: जी,
10: घर का बाड़ी में ही?
11: हाँ हाँ, घर का बाड़ी में ही हम लोग तैयार करते हैं गड्ढा टू
10: जी।
11: हाँ,

0: जब अंडा देने का टाइम होता है तो अंडा देने का टाइम में वो लोग ये नहीं करता है, बच्चा को नहीं ध्यान देता है ज्यादा
1: जी।
0: तो बतख अंडा को हम लोग क्या करते हैं, मुर्गी जो बैठता है तो मुर्गी से हम लोग बच्चा को ये कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और बच्चा जब छोटा ये होता है तो उसको हम लोग जो अरवा चाल होता है, अरवा चाल को हम लोग पीस लेते हैं ग्राइंडर में या ये में, और पीस के हम लोग उसको 2-4 दिन हम लोग खिलाते हैं उसको।
1: अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए?
0: छोटे बच्चों के लिए।
1: अच्छा।
0: अब बड़े बच्चे के लिए तो हम लोग ये सब जो मार्केट में दाना सब मिलता है वही दाना सब लेके हम लोग खिलाते हैं। और जो वो लोग को तो थोड़ा ये वाला चीज चाहिए, गरम वाला चीज चाहिए, जैसे कि सूखा मछ का गुंडी हुआ हट सब में बेचते हैं, वही सब ले जाते हैं और वही सब भात में सान के वो लोग को देते हैं।
1: अच्छा, ये जो बत्तख को आप चारा देते हैं तो ये प्रतिदिन इसी तरह का देते हैं कि इसमें भी फिर बदल बदल के देते हैं?
0: बदल बदल के देते हैं, खाना देते हैं और टाइम में वो दाना सब देते हैं। और जो बारिश का दिन होता है तो हम लोग का खेती सब में तालाब सब में घूम के आते हैं, वो लोग दिन भर वो तालाब में रहता है।
1: अच्छा।
0: शाम को आता है तो खाने के देते हैं और सुबह एक बार खिला के भेज देते हैं, दिन भर तालाब में रहते हैं।
1: ये सबको तो पानी का जरूरत बहुत रहता है?
0: जी, पानी तो जरूरत होता ही है, बतख के लिए तो पानी नहीं होने से वो लोग रहेगा नहीं।
1: बिल्कुल। छोटे चूजिया बच्चों के लिए उसके लिए गुंडी वाला चावल देते हैं?
0: गुंडी वाला चावल आदवा चावल का जो ये है वही सब ग्राइंडर में हम लोग पीस लेते हैं और पीस के पालक जो रहता है ये वाला मुर्गे वाला वो पालक से हम लोग उसको खिलाते हैं, मैंने हफ्ता भर सब खिलाते हैं और उसके बाद तो खाना सबको ये करके देते हैं तो खा लेता है वो लोग।
1: अच्छा, बत्तख को बड़ा होने में कितना समय लगता है?
0: बत्तख को बड़ा होने में 6-7 महीना लगता है भेजने लायक के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: इन सबको जहाँ रखते हैं तो वहाँ घर किस तरह का आप बनाए हुए हैं?
0: वो बत्तख के लिए घर अलग से बनाए हुए हैं, वो लोग को मुर्गा के साथ में देना में ये है, वो लोग का अलग से दे दिए हुए हैं और थोड़ा सा उसको ये है, उसको डेली हम लोग साफ सुथरा करते हैं।
1: घर हवादार बनाए हुए हैं?
0: हवादार बनाया हुआ है।
1: अच्छा
0: जी।
1: इन बत्तखों में किसी तरह का रोग लगता है?
0: हाँ, रोग तो होता ही है, जो कि जैसे आँख में वो लोग का आँख अपने से बंद हो जाता है
1: जी।
0: पानी गिरता है और आँख बंद हो जाता है तो मेडिकल से आके हम लोग ये में लेके दवाई ले जाते हैं और दवाई खिला देते हैं तो ठीक हो जाता है।
1: अच्छा, तो ये जो रोग लगता है ये सभी मौसम में लगता है या मौसम के अनुसार लगता है?
0: मौसम के अनुसार में लगता है।
1: अच्छा, तो ये ज्यादातर किस मौसम में ज्यादा होता है?
0: बारिश का ये में ज्यादा होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जो दिन भर रहता है ना तालाबे में तो उसी में बारिश का दिन में ज्यादा होता है, धूप का दिन में थोड़ा कम होता है।
1: अच्छा। बत्तख को जब रोग लगता है तो रोग से हटाने के लिए कहाँ से आप दवा लाते हैं, इसका उपचार कैसे करते हैं?
0: जो हम लोग का सरकारी ये का है, पशुपालन विभाग का है, वो पशुपालन जाते हैं और वहीं से दवाई ला के हम लोग उपयोग करते हैं।
1: अच्छा, तो ये लगभग कितने दिनों तक आप लोग खिलाते हैं?
0: 6-7 दिन खिलाते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है
1: जी। ये बत्तख जिस आवास में रखते हैं उसका सफाई आप लोग प्रतिदिन करते हैं?
0: जी, प्रतिदिन करना पड़ता है, वो लोग का तो कचरा ज्यादा ये होता है ना
1: जी,
0: इसीलिए मैंने प्रतिदिन करना अनिवार्य है
1: जी। एक बत्तख लगभग कितना अंडा देती है?
0: वो तो खाने का ऊपर में है, 20-22 टू देता है एक एक टू।
1: अच्छा।
0: वो खाने का ऊपर में ये होता है, जितना वो लोग का ये खाने का ये रहेगा इतना, बारिश का दिन में थोड़ा ज्यादा अंडा देता है।
1: अच्छा।
0: और ऐसे दिन में एक दिन छोड़ के ऐसे देता है
1: जी। तो ये मतलब चारा आप उसको किस तरह का खिला रहे हैं?
0: जी। अच्छा। जैसे खिलाएगा वैसे ही माने फायदा आपको मिलेगा।
1: अच्छा
0: जी।
1: बत्तख पालन से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
0: जैसे कि अभी बेचने लायक हो गया तो बाजार लाते हैं या कोई भी वो वहाँ पर ये करते हैं तो हम लोग वही बेचते हैं।
1: अच्छा, तो एक बत्तख का लगभग कितना मूल्य रखते हैं?
0: 600 से 700।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा है, लगभग 5-6 महीना के भीतर में आपको लाभ मिलता है
0: जी। 5-6 महीने के अंदर में हम लोग को 600-700 अगर मिल जाता है वो सीजन का ये में। अच्छा। जैसे कि भादो महीना में हम लोग का जैसे मेला ये होता है उस टाइम में

0: करना है तो अच्छा से ध्यान दे के थोड़ा करना, यही सब हम किसान भाई सब को संदेश देते हैं कि अच्छा से पालन कीजिए और हमारा जो पालन होता है कि रोग से आप लोग बचाइए। जब बीमार होता है तो दवा कीजिए और दवा का ये खान पान भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जब बड़ा होता है तो लाभ ही लाभ है। एक ठू बतख में आप लोग का 600-700 में हम लोग बेचते हैं, तो बतख पालन ही हम लोग का ये नहीं है और भी दूसरा भी ये है, तो इसीलिए हम लोग बतख पालन हम लोग करते हैं।
1: बिल्कुल, खेती के साथ आप बतख पालन भी किए हुए हैं और आपको बहुत अच्छा ही कर रहे हैं जी। बतख पालन से होने वाले लाभ, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार
0: जोहार।

0: कर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा का।
4: किसान भाइयों बहनों, इन जरूरी संदेशों के बाद आइए आपको सुनवाते हैं हो लोकगीत मालती लक्ष्मी हिस्सा और साथियों के स्वर में।

0: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: किसान भाइयों बहनों, इसी संदेश के साथ आज का हमारा किसानवाणी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नई जानकारियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए कार्यक्रम से मुझे यानी सुनीता हाजदा और
2: आशा मनी गोप को दीजिए विदा।
1: जोहार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद ने जनवितरण दुकानों में लाभुकों को पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल ब्लड प्रेशर तथा एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराने और CHC केंद्रों पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा पुलिस ने सगमा से अगवा LNT कंपनी के कर्मचारी मुरारी तिवारी को अपराधियों के चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया है। SDPO सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 7.5 लाख की फिरौती मांगने वाले दो अपराधियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरांगी में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों टाटीझरिया के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। रामगढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत विभिन्न मामलों में फरार 15 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पिछले दो दिनों के दौरान सभी थानों और OP क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुल 19 वारंटों का निष्पादन किया। पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण माल पहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने मलबे को हटाकर आवागमन सुचारू कराया। आपदा में कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सातरंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं संथाली कार्यक्रम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: परिवार जो तो

0: ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ
1: शैक्षणिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते।
2: निया संदेश तैनम दारे रोहय अडी दरकार इदी काते मन रघुनाथ मुर्मू तिकिना थुतिबोन आंजोमा।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: निये संदेश तैनम मिशन वासले योजना दिखाते तुतिबन अंजुमा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संथाली अखड़ा, आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस झामुमो और राजद ने अपनी सांगठनिक बैठकें तेज कर दी हैं। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है।
5: हमारा हाईकमांड बात कर रहे हैं, आरजेडी और लेफ्ट से बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक प्रायोरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, सो हम वेट कर रहे हैं।
4: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अभी काफी समय है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और सही समय पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे।
6: सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर संभावनाओं पर सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेचर देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उसका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाए।
4: इधर रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य भर में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलावार दौरे की रणनीति तैयार की गई है।
7: पूरे राज्य का हम लोग का दौरा चल रहा है अगले महीना से। अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी का राय मशवरा हुआ, उन्होंने तीनों विधायक को भी डायरेक्शन दिया। लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, उसके विषय में डायरेक्शन दिया।
4: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जून के रांची दौरे के आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दौरे से राज्य में पार्टी के आगामी अभियानों और सांगठनिक विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
8: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 और 7 को रांची में आगमन हो रहा है और विशुद्ध रूप से वो झारखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं। इस क्षेत्र में लगातार उनका संपर्क चुनाव के समय में भी इनका यहाँ पर आकर के चुनावी काम में सहयोग करना रहा है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, यहाँ के पार्टी के संगठन को भी बहुत वास्तविकता से जानते हैं।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं और युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। उन्होंने जनवितरण दुकानों में पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल बीपी व एक्सरे मशीन लगाने और सीएचसी में दवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता और प्रभावितों को शुद्ध पेयजल देने को भी कहा। धनबाद रेल मंडल के राजहरा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से अपलाइन पर परिचालन ठप है। इसके कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और राजधानी सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य ने आज गुड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गुड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा।
9: कोचिंग मेंटेनेंस के लिए काम तो काफी प्रगति पर है, कुछ काम उसमें रह गया है, तो आई होप कि एक महीने में फिट बन जाएगा। और ये डिपो के ऑफिस वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, इसमें भी छोटे मोटे काम रह गए हैं। इलेक्ट्रिकल के दो ट्रेन जो यहाँ से चलती है मेंटेनेंस के लिए भागलपुर जाती है, वो दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे।
4: और अब मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुँच चुका है, जिसके बाद 15 जून तक झारखण्ड आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जून तक वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज का तापमान सर्वाधिक 41 डिग्री रहा, जबकि गुमला में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। आपदा में कई कच्चे मकानों की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने

0: स्वर्ण पदक जीता। वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। ट्राइथल स्पर्धा में आरती कच्छप ने रजत और प्रेम किशोर महतो ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। झारखंड महिला प्रीमियर लीग में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा नागपुर ब्लास्टर्स ने कप्तान शशि माथुर के 35 रनों की मदद से 145 रन बनाए। जवाब में पलामू वॉरियर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप। कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा। 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने दुमका परिसदन में दुमका और जामताड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा उनसे जुड़ी शिकायतों एवं समस्याओं पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जामताड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नहीं पहुँचने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी जताई और कहा कि दोनों के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। दरअसल
2: क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
3: तो
2: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूँ तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
2: जी,
3: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान

0: भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
1: जी,
0: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
1: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है।

0: अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सब का इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूँ, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी, जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुँचता हूँ, गर्भवती महिलाओं तक पहुँचता हूँ, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और

0: कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो
1: जी
0: यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
0: मैंने
1: है?
0: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
0: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
1: जी
0: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
0: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
1: जी
0: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने,
1: जी
0: शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थी
1: जी,
0: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रहे हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया है, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग वो स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो। इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहाँ से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं, इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पर बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की

0: जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं
1: जी
2: उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा,
1: जी
2: उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़, 140-145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14% points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phansi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में कर, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और

0: और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
2: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है, मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते, इतना बड़े

0: का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय था स्वास्थ्य सेवा और आज आप इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी में रात संध्या के 7:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 साल पर विशेष चर्चा।

ये आकाशवाणी है। ये वो जादुई शब्द है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के न जाने कितने ही खूबसूरत पलों को सवारा है। आज हमारी अपनी आकाशवाणी अपने सफ़र के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर चुकी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आज आपकी इस मनपसंद मनोरंजन के साधन ने अपने शानदार 90 साल पूरे कर लिए हैं। इस विशेष अवसर पर हम हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आकाशवाणी के इस 90 साल में हमारे श्रोताओं ने जो अपना साथ हमारे साथ बनाए रखा है, वैसे वो साथ वो आगे भी ऐसे ही निरंतर बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे श्रोता हैं तो हम हैं। तो श्रोताओं, 9 दशकों का यह सफ़र सिर्फ रेडियो का नहीं बल्कि बदलते भारत के इतिहास का गवाह है।

श्रोताओं, साल 1936 में शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो आज दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। देश के कोने कोने तक, चाहे वो कश्मीर की वादियां हों या थार का रेगिस्तान, आकाशवाणी ने हर घर में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। आइए आज इसके ऐतिहासिक सफर की कुछ बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। आकाशवाणी, देश की धड़कन। जी हाँ श्रोताओं, हम इसे देश की धड़कन कह सकते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सिर्फ आकाशवाणी ही मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करती थी। और न सिर्फ मनोरंजन, बल्कि ये आकाशवाणी गवाह है हमारे देश में हुई न जाने कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं का, जिसकी जानकारी हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को इसके माध्यम से हुआ करती थी। सन 1947 में आज़ादी की पहली सुबह हो या गणतंत्र का ऐलान, देश की इतिहास की हर बड़ी घटना की घोषणा आकाशवाणी के माध्यम से ही सुनाई जाती थी। इसके अलावा आकाशवाणी हमसफर रही किसानों की भी। कृषि जगत जैसे कार्यक्रमों के जरिए हरित क्रांति को सफल बनाने और किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने में भी रेडियो ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई। विशेषज्ञों के द्वारा हमारे देश के किसानों को समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारियां दी गई। ये जानकारी मिट्टी की मृदा को बढ़ाने की हो, या फिर कैसे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जाए, या फिर कैसे अच्छी खाद को बनाया जाए, या फिर हमारे किसान भाइयों के लिए जो अलग अलग योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है उसके बारे में जानकारी देनी हो, आकाशवाणी ने हर क्षेत्र में किसानों का बढ़ चढ़ कर साथ दिया और उन्हें अच्छी से अच्छी, नई से नई जानकारियां प्रदान कराई। इसके अलावा युद्ध के समय में भी आकाशवाणी एकमात्र साधन था हमारे देश के लोगों तक हर चीज़ से जुड़ी हुई खबर देने का। आपातकालीन समय में आकाशवाणी एकमात्र जरिया था जब सरकार की कोई भी बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचा करती थी। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हुई जानकारी हो, चाहे वो भूकंप आने की हो, चाहे वो बारिश आने की हो, या फिर जुड़ी हो किसी भी प्राकृतिक आपदा से, इसकी जानकारी भी हमारे श्रोताओं को आकाशवाणी के माध्यम से ही हुआ करती थी। हम जब छोटे थे तो हम सुना करते थे आकाशवाणी को अपने रेडियो सेट पर। उस समय हर घर में रेडियो नहीं पाया जाता था, उस समय हर घर में टीवी मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था। उस समय किसी के घर में भी रेडियो होना एक बहुत बड़ी संपन्नता की मिसाल हुआ करती थी। लोग एक जगह इकट्ठा होकर रेडियो का आनंद लिया करते थे और सुना करते थे अपने मनपसंद गीत रेडियो के माध्यम से। सन 1957 में शुरू हुई विविध भारती सेवा ने फिल्मी गीतों और झंकार के जरिए मनोरंजन को हर आम हिंदुस्तानी के जीवन का अहम हिस्सा बना दिया। लोग बढ़ चढ़ कर रेडियो को सुनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और रेडियो में गीत संगीत का आनंद लिया करते थे। इसके अलावा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम के आनंद भी वो रेडियो के माध्यम से लेते थे। उस समय में बहुत प्रचलित एक कार्यक्रम था आमिन सयानी के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम बिना का गीतमाला। ये इसकी बुलंदी अपने चरम पर थी। ये कार्यक्रम इतना मशहूर था श्रोताओं के बीच कि लोग इसका इंतजार टकटकी लगा के किया करते थे और ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ हमारे श्रोताओं के बीच। हमारे देश की हर जानकारी रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आकाशवाणी ने हमेशा सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचाकर देश को एकजुट रखा।
यही कारण है कि बढ़ते मनोरंजन के साधनों के बावजूद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात जनता के साथ साझा करने के लिए हमारे आकाशवाणी को ही चुना। आधुनिक दौर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को जनसंवाद का सबसे सशक्त माध्यम बनाकर दोबारा हर घर में जीवित कर दिया। श्रोताओं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई और भी बातें हम आपके साथ करते रहेंगे, पर आइए अब हम हमारे एक श्रोता के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं उनके विचार आकाशवाणी।

0: रेडियो से ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी मौसम के विषय में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जाती है, जिसका उपयोग और प्रयोग हमारे किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में करते हैं। आज भी बहुत सभी लोगों का दिन आकाशवाणी से प्रसारित भक्ति संगीत चिंतन आदि कार्यक्रम से शुरू होता है। मेरे जीवन में भी रेडियो का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेडियो के साथ साथ अनेक सुख दुख के क्षण बिताए हैं। 9वीं 10वीं के बाद रेडियो सुनते सुनते पढ़ाई की आदत तथा बाद में पत्रों के माध्यम से रेडियो में सक्रिय सहभागिता के कारण रेडियो ने मुझे अनेक दुर्गुणों से दूर रखा है, जिसके लिए मैं रेडियो आकाशवाणी का अजन्मा भरे रहूँगा। 1995 से 1998 में मुझे आकाशवाणी के युवावाणी विभाग में अस्थायी उद्घोषक के रूप में प्रत्यक्ष काम करने का अवसर मिला। इन 3 वर्ष में मैंने आकाशवाणी के लिए भरपूर कथा कविताएँ और कहानियाँ लेखन किया, इसलिए आज भी रेडियो अर्थात आकाशवाणी मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। रेडियो पर जिस प्रकार से गीत संगीत के साथ विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है, वह अन्य कहीं सुनाई नहीं देती। आकाशवाणी हर वर्ग के श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, इसलिए आकाशवाणी को जन जन की वाणी, आकाशवाणी ज्ञान और मनोरंजन की वाणी, आकाशवाणी कहा जाता है। मैं पुनः एक बार आकाशवाणी के प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे एक विशेष श्रोता, खास श्रोता राजेश साबले पाटिल जी को, जो कि बातें कर रहे थे छत्रपति नगर संभाजी से। आइए इनके बाद जुड़ते हैं हमारे एक और श्रोता लाल बाबू मंडल जी से।
2: शानदार 90 वर्ष पूरे होने पर आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे एक बेहद खास और पुराने श्रोता। आइए जानते हैं कि रेडियो से बदलते दौर और इन यादों का इनका सफर कैसा रहा। तो नमस्कार सर।
3: नमस्कार
2: सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने आज 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो ये आकाशवाणी का जो सफर है 90 वर्षों का, वो कैसा रहा और आकाशवाणी ने आपके व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव डाला है?
3: जी मैडम, मेरा उम्र तो इतनी नहीं है, मेरी उम्र करीब 50 साल है जी। और मैं करीब 30-35 साल से रेडियो को सुन रहा हूँ
2: जी जी।
3: और इसे 30-35 साल में बहुत सारे अनुभव हुए हैं रेडियो के, तरह तरह के प्रोग्राम, पहले कुछ पुराने प्रोग्राम्स मिलते थे
2: जी।
3: अभी भी पुराने मिलते हैं, लेकिन उस समय आज से 30-35 साल पहले जो प्रोग्राम मिलते थे उसमें और आज के बदलाव के ज़माना में जो नए नए प्रोग्राम है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है
2: जी।
3: खैर, अभी जो प्रोग्राम होते हैं वो आधुनिक युग का बहुत ही अच्छा लगता है
2: जी।
3: और हम हमेशा रेगुलर जो है रेडियो को सुनते रहते हैं
2: जी। सर, हमारा रेडियो जो काम करता है, रेडियो बोलने से कहने का तात्पर्य हमारी यह है कि आकाशवाणी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय के साथ काम करती है, तो क्या आप मानते हैं कि ये अपनी इस जो कहावत पे ये बना है कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अर्थ को पूरा करती है?
3: जी बिल्कुल, निश्चित रूप से करती है, क्योंकि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का मतलब होता है कि हर एक निम्न वर्ग से लेके ऊंचे वर्ग के लोगों तक किसी भी चीज़ का पहुंचना। और ये जो रेडियो एक माध्यम है, वो जमीनी लेवल से लेके और ऊपर के लेवल के लोगों तक बहुत ही अच्छे प्रकार से पहुंचते हैं। और जमीनी लेवल लोग खास कर करके जो है वो निश्चित रूप से आज भी बहुत चाव से रेडियो को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं जी। पुराने समय में रेडियो के माध्यम से ही सारे समाचार मिलते थे
2: जी।
3: जैसे कि बहुत सारा समाचार ऐसा था जो जिसको तो हम लोग देखा नहीं, जैसे इमरजेंसी का समय हुआ
2: जी।
3: और उससे पहले भारी भूकंप आया और भी बहुत तरह की वे इमरजेंसी टाइम सब आया, जिसको अपने माता पिता तथा दादाजी दादी से के द्वारा सुनने में आया कि हम लोग रेडियो से ही समाचार को सुनते थे। और हम अपने जीवन में भी रेडियो का के द्वारा काफ़ी समाचारों को सुना है।
2: यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपात की स्थिति में जब देश था तो रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन था, हम लोगों तक जानकारियाँ पहुँचा।
1: पहुंचाने का।

0: उस समय रेडियो कैसा मनोरंजन किया करता था हमारा। रेडियो से स्वस्थ मनोरंजन हम लोगों तक पहुंचाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। हर तरह की योजनाएं हो जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, या फिर और भी शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी है, सेहत से जुड़ी हुई जानकारी है, ये भी हम कोशिश करते हैं हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की। तो इस विषय में आपका क्या कहना है?
1: जी बिल्कुल, हमेशा समय समय पे यहाँ कृषि से संबंधित एवं शिक्षा से संबंधित एवं स्वास्थ्य से संबंधित एक्सपर्ट लोग या उनके जानकार लोग के द्वारा जो इंटरव्यू होता है उसे हम लोग सुनते हैं, और इससे काफ़ी जानकारी हर क्षेत्र के बारे में मिलती है।
0: जी जिस सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ आपने इससे जुड़ी हुई बात की, और आकाशवाणी का ये 90 सालों का सफ़र आपको कैसा लगा उसके बारे में आपने हमसे विचार साझा किए, इसके बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: तो सुनवा रहे थे हमारे एक पुराने श्रोता श्री लाल बाबू मंडल जी के साथ बातें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे श्रोता लाल बाबू मंडल जी के साथ बातचीत, और इस बातचीत के साथ ही श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने अभी इशारा कर दिया है कि आकाशवाणी के 90 साल पर ये विशेष चर्चा का जो कार्यक्रम है, अब हमें उसे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल हम आपके साथ फिर से कुछ नई जानकारियों के साथ इसी विषय पर जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है फजिलका पंजाब से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, सालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोगों ने। बागपत यूपी से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं एहसान अली। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमें अपनी फरमाइश भेजी है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर, अमोल मानकर, सुभताई मानकर, श्लोक और दीपाली ने। रेलवे कॉलोनी बटिंडा पंजाब से अपनी फरमाइश हमें भेजी है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोगों ने। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश के भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर ने भी हमें खत लिखा है। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से असरत तड़वी, आरिस अरसलान और यूनिस तड़वी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से हमें खत लिखा है मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोगों ने। सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कालका से सुबचंद बजाज और करनाल से जग्गी दुआ की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। मोपका भाटापाड़ा से हमें खत लिखा है भविंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कुचाई तोड़ांगदी दो के मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सूरजमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागड़ी। अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकल कास लेकर, विमल विशाखा कास लेकर ने भी हमें खत लिखा है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है गायक कलाकार श्रेया घोषाल के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म जहर से। बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन है राजेश रोशन की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा ने भी हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। बोर्डसरा नैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू ने भी हमें खत लिखा है। मेरी टोला चायबासा के विशाल कच्छप और दुलारी बिरुड़ी की फरमाइश भी हमें मिली। इचलकरंजी महाराष्ट्र से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म शहर से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म यादों की बारात से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है कुचाई मित्री से केपी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए। ग्राम सुरापेड़ा से बासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु, बीर और बीरू सरदार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रीक्षित, शशिकांत रियारी, स्वीटी सागर, अंशु रितिका, नीरज रिचा, चित्रंजन उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोग। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, रमापुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी और आरएस पुरी। तुरी टोला चायबासा के मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटाई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की फरमाइश भी हमें मिली। लक्षनपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जीवन लाल रजक, सरहुजनी रजक, रामजी साहू। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर के प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बाबा कुटी रायगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान। बड़गांव बलौदा बाजार के रामदुलार साहू और नीलिमा साहू ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। चितलवाड़ी अकोला के अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और इंगले परिवार के सभी लोगों ने अपनी फरमाइश हमें फिल्म यादों की बारात के इसी गीत के लिए भेजी। डोंडी लोहारा दुर्ग से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामोरिया। अनारकली बाजार जगराओं के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। एकता कॉलोनी रोहतक से ये कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गत हमें मिला है और हमें खत लिखा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा रे। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती ने अपनी फरमाइश हमें भेजी। चांडल ग्राम हारूडी के तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, दिनबंधु महतो और मनमोहनी महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलुका को और जी एस रामगढ़िया। चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंदरा ठाड़ी मधुबनी बिहार के शोभे कांझा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और मास्टर एस के सज्जन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म यादों की बारात से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: समर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायभाषा केंद्र से, आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है मछली गोदाम कैंदीमोड़ा रायगढ़ से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका सिंह, पूजा सिंह, लीलू रितु सिंह और ऋषभ सिंह। बड़विल उड़ीसा के सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। बागपत चौहल्दा से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। रेलवे रोड गंजू डबरा के मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से, और हमें खत लिखा है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। बठेना पाटन के बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली और शिवम, चटौदा सरागांव से सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायपासा के भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल की फरमाइश भी हमें मिली है। बड़ा निमड़ी चायबासा के तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर ने भी हमें खत लिखा है। गाँव केरो पंजाब के गुरदूषण लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरुशब्द की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म बेताब का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बटिंडा रोड डबावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, सोएब खान, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और साहिद भाई की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। गांधीबाग अकोला से इसी गीत को सुनना चाह रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। ग्राम सोगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ के फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन की फरमाइश भी हमें मिली है। तिवर्ता डबरीपाड़ा छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम और मनमोहन सिंह मरकाम ने। ग्राम पैजनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और अरोध्या चंसौलिया ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत फिल्म बेताब सही।

फिल्म बेताब के इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता थे माहौलिया सोनवा झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। आमला टोला चायपासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता थे गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। इसी गीत के लिए हमें खत लिखा रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और ची डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने। फिल्म बेताब के इसी गीत के लिए हमें एक और फरमाइश मिली आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से और ख़त लिखने वाले श्रोता थे ज़ैर अब्राहम, उज्जैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोजफ रुफर्ट, अविनाश क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ गोंडा ने, हीरामन सेंडे और उनके साथी ग्राम बादुड़ी से नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति, विक्की और पुष्पा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली थी। पुरानी टोली जसपुर छत्तीसगढ़ के मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनमेश नागदेव और अनसन नागदेव की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। गांव के तासराय किला से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता थे राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, अनामिका, सुनीता, गीता, रीता, सुलेखा, आराध्या, माहिद, खुशी और राहुल गोप। और इस गीत के बाद श्रोताओं आपसे कुछ ज़रूरी बात हम करना चाहेंगे कि श्रोताओं यदि आप भी अपनी पसंद के कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिखें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायपासा, चायपासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ श्रोताओं अपना पूरा नाम और पता हमें अवश्य ही साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजें। और हाँ श्रोताओं एक और बात कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो सुनते रहिए हमें यूं ही और बढ़ाते रहिए हमारा मनोबल, देते रहिए हमें प्रेरणा ताकि हम आपके लिए हर दिन अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पेश कर सकें। और इन सभी चीज़ों के साथ श्रोताओं अब हमारे रेडियो के स्टूडियो की घड़ी ने भी ये इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम रजनीगंधा से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से

0: कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
2: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले

0: 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वुजराए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज किया है। जुनूब मगरबी मॉनसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में तशराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को खत्म कर दिया और इस खित्ते को तनाजों के एक मरकज से बदलकर मौके का मरकज बना दिया है। शुमाल मशरकी काउंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमनो कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कान तलाश करें। शुमाल मशरक खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज्म के तहत मुत्तहिद हों कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेजबान वजीर आला कोनार्ड के सिंगमा ने कहा कि मरकजी दाखिला और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारतों की शुमाल मशरकी रियासतों के 8 वज़राए आला को हिदायत के मुताबिक सब मुश्तरका हदफ की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है और एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा यकजहती पर मबनी दुनिया की

0: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
1: वजीर आजम ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योगासन को एक आलमी खेल की शिनाख्त अता करेगी और नौजवानों के लिए वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जाम निजाम लेकर आता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद ने 60 से ज्यादा मुल्कों के 400 शुरका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, घाना, कीनिया और मलेशिया से आने वाले बैन अल-अक़वामी दस्ते शामिल हैं। मेजबान मुल्क भारत 122 मेंबरान पर मुश्तमिल मजबूत दस्ता उतार रहा है, जो उम्र के एतबार से 6 जुमरों में मुकाबला करेंगे। ये 6 जुमरे सब जूनियर से सीनियर्स मास्टर्स के जुमरे पर मुश्तमिल हैं। आलमी पैमाने पर पहली मर्तबा इस खेल के लिए एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ताकि तमाम सकनात, तवाजुन और हरकत के फैसले में कतई शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ये चैंपियनशिप योग आसन के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत है और इसे रूहानी खुशी के एक शोबे से बहुत बुलंद करके एक इंतहाई तकनीकी और मुकाबला जाती खेलों का मुकाबला बना देती है, जिसका मकसद ओलंपिक तक रिसाई हासिल करना है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीर हक्कानी।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कार्रवाई जाति कारकर्दगी को मुस्तहकम करने की गरज से फील्ड कमोडोर्स के लिए मालियाती हद में दुगने इजाफे को आज मंजूरी दे दी। उन्होंने तिब्बी और दीगर प्रोजेक्टों समेत दिफाई सर्विसेज के लिए मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज भी जारी की। वजारत दिफा ने कहा कि मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज इस साल की बजट जाति मुख्तस रकम के मुताबिक महसूलात के जरिए 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की राह हमवार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल के मुतालिक जवाबित का एक मुसव्विदा जारी किया है, जिसमें उसने वाजह कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर एआई पर मबनी तज्जियात या एल्गोरिदम पर मबनी फैसले साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में अवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। यह मुसव्विदा एआई के तआवुन से अमल में आने वाले कई मामलात की इजाजत देता है, जैसे केस का मैनेजमेंट, समाअत की तारीख, वजूहात की फहरिस्तों की तैयारी, कानूनी तहकीक, दस्तावेजात की खुलासा साजी, तर्जुमा और रस्मुलखत की मुंतकली। अलबत्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती निजाम से मुतालिक तमाम मामलात इंसानी अदालती कंट्रोल में ही रहेंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और सड़क आमोदरफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी की जानिब से तैयार भारत की पहली फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली मुसाफिर गाड़ी का इफ्तिताह किया। फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली गाड़ियां इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से E20 से लेकर E100 की रेंज तक चल सकती हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ी के जुमरे में फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी की शमूलियत महज किसी प्रोडक्ट का इफ्तिताह नहीं है, बल्कि ये मुल्क में तवानाई की काया पलट के सिलसिले में एक नए बाब का आगाज है। जनाब पुरी ने कहा कि फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इख्तियार करके इथेनॉल पर मबनी नकलो हरकत के असरात को खातिर खा हद तक बढ़ाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने इस इफ्तिताह को एक यादगार और पेशबीनी पर मबनी हुसूलयाबी करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि यह संग मील वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साफ, पायदार और खुद कफील नकलो हरकत के तस्वुर से कतई मेल खाता है।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए

0: ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजन है।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। यह करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को लगाम लगाने की गरज से ऐवान के जरिए यह चौथी कोशिश है जिसके लिए बकौल तनकीद निगारों के कांग्रेस की मंजूरी का फुकदान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निजाम वजा किया है ताकि इम्तिहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तिहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िदा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तिहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरखास्त फॉर्म पुर करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तिहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तिहान देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ग्याना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाकये में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और अहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाकये में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और क्राइकल में बहुत और बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश कोंकण गोवा लक्षद्वीप मध्य महाराष्ट्र जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम तेलंगाना उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज तेज बारिश हुई जिसके सबब गर्मी और हब्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जाबंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगा 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। निजी तवानाई तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئنشپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा, तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की है, जो आदिवासी और जनजातीय हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 जैसा कि बताया हमारे उपकरण की 10 मई से 9 जून तक लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजाति समाज के लिए पिछले 12 वर्ष जो सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल के बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार भी पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज के डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हैं बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह की कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उसमें भी इस सरकार के तहत पीएम जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति

0: हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले और ये 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे उत्सव को मनाया जा सके उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके और उसके तहत हमारा 10th May से 17th May तक ये टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर ये विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी इस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किया तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं उस तरह का ढांचा होता नहीं तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाया जा सके।
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन और साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजातीय गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप जिनके पास तक कैसे सारी पहुंच सकें इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90,00,000 ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया तो अगर आप आधार कार्ड इनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 3,00,000 लोगों को आधार कार्ड में इनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2,50,000 लोगों को दिया गया और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान जो आपका प्रश्न था जी डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स की जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से लगातार देने का।
1: जी यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके

0: ये काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
1: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं। उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने, और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलकर ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों से बैठ के ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गाँव तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गाँव में गांव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
0: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडी जी, कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
1: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने और सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के उस पर, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्केल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए।
0: जी पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

1.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वरों में।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम की अगली गजल आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फनकार जगजीत सिंह के स्वर।

फनकार जगजीत सिंह के स्वर में गाई हुई इस गज़ल के साथ ही हमारा गज़लों का ये कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत गायक कलाकार आशा भोसले के स्वर में फिल्म लूटमार से।

गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आपने सुना फिल्म सौदागर से। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दादा से, आवाज़ गायक कलाकार यशोदास की।

जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, हम उन्हें बता दें कि आकाशवाणी के चायपासा केंद्र से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म दाग से, आवाज़ गायक कलाकार लता मंगेशकर की।

0: फिल्म चितचोर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।

0: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally. It will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Ghangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। FM के 101.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में होंगे उपस्थित। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।